संग में। और आप सुन रहे रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। दोस्तों आओ आज की सभा में प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा जानते हैं। सो रूपरेखा को जानने से पहले आओ जान लेते हैं आज को दिन तारीख बाद समय को। सो आज दिन ही शुक्रवार को तारीख है 9 अक्टूबर 2026। इवेरा अपने स्टूडियो की घड़ी में समय भाव है 7:01। सो दोस्तों जो अपन दिन तारीख समय को जाना है आओ यही क्रम में जानते हैं प्रसारित हुए वाय कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम सुने अपन भोर कार्यक्रम जी में सुने भक्ति भरे गीत अनखो। एक बात सुने पुनः प्रसारण कार्यक्रम शुक्ल हम होंगे कामयाब कार्यक्रम अम्मा के चौके से खेतलियान विधा बुंदेली। दोस्तों ये कार्यक्रम पूर्व प्रसाद कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सुने अपन 8 बजे से 10:30 बजे तक, 10:30 बजे से 11 बजे तक सुने आज की बात, 11 बजे से 12 बजे तक सुने बातें तुम्हें ही, 12 बजे से 1 बजे तक सुने लोकरंग कार्यक्रम, 1 बजे से 3 बजे तक सुने शतरंगी कार्यक्रम, 3 बजे

जगतारे भजन करो हरे जगत जगतारे भजन करो हरे।

0: नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ हैं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसायों को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस तरीके से रोजगार को बढ़ा सकते हैं खेती में।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि हमारे जब साथी किसानी तो करते ही हैं, लेकिन किसानी में किस तरह से वो एक व्यवसाय के तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती है कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
1: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच के बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको न जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
1: बिल्कुल। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जी जो कृषि विभाग में पदस्थ हैं, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपनी खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यवसाय तरीके से देखा जाए तो व्यवसाय तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके, बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपने ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
0: तो सारी जानकारी आप यही बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
1: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है यहाँ पर, चूंकि दलहन

0: चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आज के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है और बुंदेलखंड रीजन
1: जी,
0: जो ये झांसी ललितपुर आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
1: जी,
0: चना
1: जी,
0: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है, इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
1: जी,
0: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
1: जी,
0: तिल का तेल है
1: जी,
0: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटे, जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में एक जाति एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है विचार मिलने की बात है
1: जी, जी।
0: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
1: बिल्कुल सर,
0: तो इसलिए पूर्ण विचार एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए
1: जी।
0: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
1: जी।
0: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
1: जी।
0: तमाम साधन कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
1: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर?
0: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
1: जी,
0: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके स्वावलंबन में आए
1: जी,
0: उस तहत में काम कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है, तो उसका हम उपयोग गांव में तमाम चीजें होती हैं
1: जी,
0: जैसे बेसन है
1: जी,
0: दलिया है
1: जी,
0: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सर,
0: तो किसान जो है के घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे हैं रोजगार के लिए
1: जी,
0: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है जो 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती
1: जी,
0: उसको ले ले और स्वयं से पैकिंग करें, उसका अपना जो है सोसाइटी बना ले, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या PO होता है
1: जी,
0: तो उसके आधार पर काम कर ले और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके की हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई ऐश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? सर
0: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
1: जी।
0: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए, गांव में लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाए, जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
1: जी।
0: और जो चीजें हैं आज के युग में, जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
1: जी,
0: उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है, लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है। अगर चावल की बिनाई कर ले,
1: पाइप
0: बिनाई करके उसको पैकेटिंग कर ले
1: जी,
0: दाल जो है चना है चने की ग्रेडिंग कर ले
1: जी,
0: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चना के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी,
0: उनको

0: मार्केट में जो है आगे आना चाहिए, जो दलाल है ब्रोकर्स है जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा। और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है आज के समय में, एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है। तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है। जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। चूंकि अगर सर बात करें इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर बताएं।
0: कोई चीज बिकती कब है, जब क्वालिटी होती है। क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
1: जी,
0: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले आओगे, तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर।
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है
1: जी।
0: यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर।
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
1: जी।
0: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी।
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग भी बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं हैं
1: जी
0: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी,
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपके क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
0: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे, धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं, और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो
1: जी। बहुत बहुत सर धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों, अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने, और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके एक पैकिंग करके

0: मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो आप बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथ ही कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही है, यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
0: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहाँ पे कि हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
1: तो साथियों अब हमारा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं, तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है, तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओछा तिगेला के पास ओछा,
1: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन नंबर है हमारा
2: 92-19-20-77-49।
0: साथियों आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा, तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मरीज को जाने की इजाजत, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात, तब तक के लिए
0: नमस्कार।
1: और चल चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। हम होंगे कामयाब में आज हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस को लेकर। श्रोताओं, हमें कैरियर अपना कैसे बनाना चाहिए, कैसे सही चुनाव उसका करना चाहिए, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम जानने के लिए आज इस कार्यक्रम में आपके बीच आए हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वर्षा।
1: मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम।
0: साथियों, सही कैरियर का चुनाव कैसे करें, अपना कैरियर कैसे बनाएं और कैसे हमें जो कंफ्यूजन होती है उन कंफ्यूजन को क्लियर करना चाहिए, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। हम सबकी जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है हमारा बचपन। ना किसी बात की कोई चिंता होती है और ना ही किसी बात की कोई फिक्र होती है, ना वर्तमान की चिंता और ना ही भविष्य की। लेकिन एक समय बाद ऐसा क्षण आता है जब हम सबको जिम्मेदारी का एहसास होता है, भविष्य की चिंता सताने लगती है, अपना करियर बनाने की जिद होने लगती है। ये समय ऐसा होता है जब कुछ भी समझ नहीं आता तो मन में आता है कि काश कोई होता जो हमारा करियर मार्गदर्शन कर सकता, हमको बता सकता कि सही करियर का चुनाव कैसे करें, क्या करें क्या ना करें, अच्छा करियर कैसे बनाएं, क्या कोई कोर्स करें कि हमारे लिए और अधिक करियर विकल्प खुल जाएं। सब जानते हैं कि एक गलत कदम किसी का भी करियर बेकार कर सकता है और वही सोच समझ के उठाया गया कदम किसी की भी जिंदगी को बदल सकता है। इन्हीं सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये खास बातें लेकर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं कि करियर कैसे हम बना सकते हैं और हमें अपने करियर को बनाने के लिए किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो सबसे पहली जो बात आती है साथियों वो होती है सही करियर का चुनाव कैसे करें। कई बार होता है जब हम अपने करियर को लेकर भटक जाते हैं, जो हमारे सामने आता है हमें लगने लगता है कि वही हमारा करियर है, हमारा आने वाला भविष्य वही है। लेकिन उस समय पर हमें अपनी सूझबूझ से ये ध्यान में रखना चाहिए क्या ये सही है हमारे लिए। तो आइए कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हम गौर करते हैं और जानते हैं कि करियर का सही चुनाव हम कैसे कर सकते हैं।
1: हर कोई जब करियर के चुनाव के पड़ाव में आता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि करियर का चुनाव कैसे करना चाहिए। खासतौर पर हमारे युवा साथियों के बीच ये बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं कि जब वो करियर का चुनाव करते हैं कि किस क्षेत्र में जाना है, कहाँ पे जाना है, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा कॉलेज सही नहीं रहेगा, तो करियर का चुनाव करना ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है। हर कोई अलग अलग समय पर करियर विकल्प के बारे में सोचता रहता है। कुछ लोग स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही करियर के बारे में सोचने लगते हैं और कुछ कॉलेज खत्म होते ही करियर कैसे बनाए इसके बारे में सोचते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं लेकिन बस पैसे कमाने के लिए वो उस जॉब को कर रहे हैं। करियर का मतलब होता है कि जिस काम को करने में आपका मन लगे, आपको आनंद आए, साथ ही जिस काम से कभी आपका मन ना उतरे और रोज उस काम को करने का उत्साह आपके अंदर बना रहे, उस काम में करियर बनाया जाए तो बात ही कुछ और अलग रहती है। तो लेकिन दुनिया की इस भागम भाग भरी दुनिया में हर कोई पैसे कमाने में लगा है, इसलिए सही करियर मार्गदर्शन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यहां से आप अपना करियर कैसे बनाएं, करियर गाइडेंस क्या आपके लिए होना चाहिए, इस बात के आपके सवालों का हम जवाब आपको देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। साथ साथ में कुछ सुझाव भी है और जो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होती है खासतौर पर करियर बनाने को लेकर, उस पर भी हम विचार करेंगे। लेकिन साथियों, इन विचारों को जानने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं, एक सुनते हैं प्यारे से गीत को और इसके बाद आपको और भी बातें हैं करियर बनाने के संबंध में, उस पर हम जानकारी और प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ।
1: गीत के बाद एक बार फिर से श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और हम होंगे कामयाब में हम जो बात कर रहे हैं कैरियर गाइडेंस को लेकर के किस तरह से हम अपना कैरियर चुन सकते हैं, क्या क्या मन में जो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, तो आइए इन पर हम एक नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से जब हम चुनाव की बात करते हैं तो वो चुनाव कैसे हम कर सकते हैं सफलता। अत्यधिक परिश्रम चाहती है तो परिश्रम करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो इन सुझाव से कैरियर की कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं कुछ हद तक। कैरियर कैसे बनाएं, सवाल का जवाब हम आपको देना चाहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है, हर बार ये सवाल आता है, तो कैरियर के चुनाव का जवाब किसी भी उम्र में आप ढूंढ सकते हैं। जिस दिन इंसान को अपनी रुचि का पता चलेगा उस दिन से हर कोई अपने कैरियर के बारे में सोच सकता है। यानी कि अगर आपको पता चल जाए कि आप किस चीज में सबसे ज्यादा रुचि रखते हैं और किस कार्य को करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, समझ लीजिए वही आपका कैरियर है क्योंकि आपको रुचि उस काम में मिलती है। यह कैरियर गाइडेंस उन सभी के लिए है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि सही कैरियर के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखें। अपने शौक के बारे में थोड़ा सा विचार करिए श्रोताओं, हर किसी का कोई ना कोई

0: शौक जरूर होता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को बजाना अच्छा लगता है, किसी को नाचना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करना अच्छा लगता है, तो किसी को कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है। कई अलग अलग तरह के शौक होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं। जरूरी नहीं कि डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ही अच्छा कैरियर कहा जाए। कैरियर उसे कहा जाता है जिस काम को करने में आपके मन को शांति मिलती है, और मन को शांति सिर्फ उसी काम से मिलती है जिस काम को आप पसंद करते हैं। इसलिए कैरियर के चुनाव के लिए आप सबसे पहले अपने शौक यानी के हॉबीज के बारे में सोचें। कई लोग अपने शौक से ही अपना कैरियर बनाने के तरीके ढूंढ लेते हैं और उनमें से वो लोग काफी सफलता भी प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर आपको एग्रीकल्चर में शौक है तो आप इनमें से भी अपना कैरियर चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। आपको पेंटिंग करने का शौक है तो आप अपनी पेंटिंग का एग्जीबिशन कर सकते हैं, और आप ये क्रिएटिविटी में अच्छे तो हैं ही, आपके पास कैरियर बनाने के अनगिनत कैरियर विकल्प भी हैं। जैसे कि आप इंटीरियर डिजाइनर का कैरियर विकल्प चुन सकते हैं, या फिर इवेंट मैनेजमेंट का भी आपके पास एक अच्छा कैरियर मार्गदर्शन है। इससे आप अपने शौक से भी जुड़े रहेंगे और अच्छी खासी कमाई भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है जो विकल्प हमने आपको बताए हैं सिर्फ वही नहीं हो सकते हैं, ऐसा कोई भी काम हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है, जिसको करने में आपको सुकून मिलता है। मान लीजिए आपको मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए आपको मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, आपको सिलाई करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक शौक है। और अपने शौक को हम कैसे रोजगार में बदल सकते हैं, कैसे अपने कैरियर में उसको जगह दे सकते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। बस आपको पहचानना है कि आपके अंदर वो कौन सी चीज है जिसे आप बाहर लाकर अपना कैरियर संवार सकते हैं। साथियों, इसमें कैरियर काउंसलर से सुझाव भी लेना बहुत जरूरी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैरियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आप किसी कैरियर मार्गदर्शन संस्था में भी जा सकते हैं, वो लोग कैरियर सलाहकार के पास जा सकते हैं और उनको अपने कैरियर को लेकर जो दिक्कत आ रही है वो उनको बताकर उनकी अच्छी सलाह भी आप ले सकते हैं। कैरियर काउंसलर से बात करने से आपको कैरियर का चुनाव कैसे करने के लिए सही सलाह भी मिलेगी, साथ ही आपको कैरियर विकल्प के बारे में भी पता चलेगा जिसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन यह बात भी ध्यान रखने की कैरियर सलाहकार से आपको सिर्फ सलाह मिल सकती है, कैरियर के लिए क्या चुनना है और आपके लिए क्या सही होगा उसका कैरियर मार्गदर्शन सिर्फ आपका ही फैसला है, वो आप ही ले सकते हैं।
1: अब साथियों बात आती है कि सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। ये बहुत अच्छे शब्द हैं और आप समझ ही गए होंगे कि यदि आप सफल होते चले जा रहे हैं तो आपको परिचय कराने की जरूरत नहीं रहती है। आप खुद उस भीड़ में भी अकेले दिखेंगे जहां पर बहुत सारे लोग खड़े होंगे और जानेंगे कि ये सफल व्यक्ति है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे बढ़ रहे हैं। तो परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं है। असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि आप असफल हैं तो आपको ये बातें अच्छी नहीं है, वो बातें अच्छी नहीं, ये आपके मन में सवाल चलते रहते हैं। प्रोफेशनल लोगों को आप बता करें कि अगर आपके पास कई कैरियर विकल्प हैं और आप अपने लिए सही कैरियर विकल्प नहीं चुन पा रहे हैं तो इस समस्या में आप किसी प्रोफेशनल इंसान से आप बात कर सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं जो कैरियर गाइड बनकर आपकी मदद कर सकते हैं। उन लोगों से आप खुद जाकर मिलें और उनके साथ कैरियर काउंसलिंग भी कर सकते हैं, या फिर फोन पर भी आप बात कर सकते हैं। आप उन लोगों से अपने कैरियर मार्गदर्शन के बारे में पूछ सकते हैं, इससे आपको उनकी लाइफ के बारे में पता चलेगा और उस कैरियर की अच्छाई और बुराई दोनों पता चलेंगी। आप बहुत सारे YouTube पर, बहुत सारे इंटरनेट पर ऐसे सफल कहानी लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की डली हुई हैं जिन्होंने खुद का अपना कैरियर बनाकर आगे बढ़े हुए हैं और आज उनको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं रहती है, खुद अपने आप में वो परिचय है। तो ऐसे लोगों से हमें बात करनी चाहिए, टेलीफोनिक बात करनी चाहिए या फिर जाकर उनसे बात करनी चाहिए या फिर इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। दूसरी बात आती है कि इंटर्नशिप आपको करना चाहिए यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं या आपको लगता है कि हमें इस क्षेत्र में जाना है। इस क्षेत्र से जाने से पहले इंटर्नशिप होती है। अगर आपको अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूजन है तो आप पहले इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप का महत्व आपको तभी पता चलेगा, साथ ही आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, फील्ड में काम करने का तरीका कैसा होगा। आपको अच्छी और सच्ची कैरियर गाइड आपको मिल सकती है और आपको पता चलेगा कि भविष्य में आपका कैरियर मार्गदर्शक आपको कहां ले जाएगा। इंटर्नशिप में आप वहां से अनुभव साझा कर सकते हैं, वहां से अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, लोग आपके लिए कैरियर सलाहकार बन सकते हैं अगर आप अपनी इंटर्नशिप से खुश हैं तो उसी फील्ड में अपना कैरियर आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अपना कैरियर ऑप्शन बदल सकते हैं। इसलिए इंटर्नशिप आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देगी और अपने करियर का भविष्य अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। साथ साथ में आपने देखा होगा वॉलंटियर आपको जुड़ना, जैसे कि अभी रेडियो बुंदेलखंड में भी आपको पता होगा कि वॉलंटियर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो आप वॉलंटियर के तौर पर जुड़ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि किस तरीके से रेडियो में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं फील्ड में जाकर, किस तरीके से हम लोग कार्यक्रम को डेवलप करते हैं, किस तरीके से लोगों का इंटरव्यू करते हैं, कहां पर किस तरीके से समुदाय से बात की जाती है। ये सारे बातें यदि आपको जानना है, समझना है और आपको लगता है कि वॉलंटियर जुड़कर अपना दूसरा कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं और इससे खासा अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग अपने कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं और उन लोगों के कैरियर मार्गदर्शन के लिए इंटर्नशिप करना एक लंबी प्रक्रिया होती है, और जिन लोगों को इंटर्नशिप नहीं करनी है और सही कैरियर को अपना जल्द से जल्द चुनना है तो वो लोग वॉलंटियर बनकर अपने कैरियर की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। वॉलंटियर बनने से आपको उस फील्ड के बारे में पता चल जाएगा जिससे आप अपने कैरियर मार्गदर्शन को देख सकते हैं और आपके लिए क्या सही रहेगा, क्या चुनाव भी उसका आप चुनाव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कई कैरियर ऑप्शन है तो आप उन सभी के लिए वॉलंटियर आप बन सकते हैं। वॉलंटियर करने के लिए वैसे भी समय नहीं लगता है, इसलिए आप एक से ज्यादा के लिए भी आप वॉलंटियर आप बन सकते हैं।
0: साथियों, अगर आप छात्र हैं तो क्या कैरियर चुने? अगर आप 12वीं के बाद कैरियर के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक बात का खास ध्यान रखें, इस पड़ाव पर कोई भी स्पेसिफिक कैरियर ना चुने, क्योंकि अभी आपके पास कई कैरियर ऑप्शन आएंगे, जैसे कि साइंस में कैरियर, गणित में कैरियर, जीव विज्ञान में कैरियर, आर्ट्स में कैरियर आदि। जिन कैरियर के बारे में आपको पता भी नहीं है उन कैरियर विकल्प से भी आप रूबरू होंगे, इसलिए अभी से कोई भी फिक्स कैरियर ना चुने। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको अपने कैरियर मार्गदर्शन और अपने आप को जानना होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके सामने कई कैरियर ऑप्शन आएंगे और आपका मन कभी भी बदल सकता है, इसलिए अभी आप सिर्फ नई नई चीजों को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लोर करें। कैरियर को चुनते समय रखें कुछ खास बातों का ध्यान। अगर आप कैरियर के चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और काफी समय से समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, उस समय लगता है कि कुछ भी काम मिल जाए तो हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। इस समय ऐसा सोचना जाहिर सी बात है, लेकिन यह कैरियर मार्गदर्शन का फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है। सही चीजों को आने में थोड़ा समय लगता है, इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी भी ऑप्शन के लिए सेटल हो जाएं। चाहे थोड़ा समय लगे, लेकिन आप वही कैरियर चुने जिसमें आप अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए सही कैरियर और सही वक्त का इंतजार करें। असंभव कुछ भी नहीं है। श्रोताओं, अगर आप मेहनत और लगन से किसी भी चीज को पाना चाहें तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी खासी नौकरी

0: करने के बाद भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो लोग अपने पसंद का काम नहीं कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि अब यही उनका करियर मार्गदर्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना करियर बदल सकते हैं। कोई भी किसी भी करियर को बदल सकता है। हमने ऐसी सच्ची कहानियां भी सुनी हैं जहां बड़ी कंपनी की जॉब छोड़कर लोग अपने दूसरे करियर के चुनाव को बदल लेते हैं, क्योंकि अपनी पसंद से काम करने का मजा ही कुछ और होता है और सबसे बड़ी बात, इस काम को करने में मन को शांति मिलती है। डर को कहें बाय बाय। सबको एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बैंक बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन उससे पहले यह जरूरी होता है कि यह सब किस करियर के चुनाव से मिल रहा है और कहां से आ रहा है। क्या जो हम कमा रहे हैं, क्या जो हम काम कर रहे हैं, उस काम से खुश हैं? अगर आप खुश नहीं हैं, तो सबसे पहले आपको अपने सही करियर के बारे में समझना होगा और यह बात आपको आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता। इस फैसले को लेने के लिए आपको अपने डर को भगाना होगा, यानी कि उसे बाय बाय बोलना होगा। डर इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे या फिर कम पैसों में गुजारा कैसे होगा। जिस दिन आप इस डर को निकाल देंगे, उस दिन आप अपने सपनों को पाने की पहली सीढ़ी चढ़ गए होंगे।
1: अब आखिरी बात आती है कि आपको प्रायोरिटीज का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आपके लिए प्रायोरिटीज है, कौन सा ऑप्शन सबसे पहले आता है, उसका विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि कैरियर चुनने से पहले अपनी प्रायोरिटीज का भी ध्यान रखें, जैसे कि लोग अपने परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं और उन लोगों को वो कैरियर नहीं चुनना चाहिए जिसमें उन्हें घर से दूर जाना पड़े। जो लोग घर से दूर रहने के बाद अपने कैरियर को फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका घर से दूर रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कैरियर को चुनते समय अपनी प्रायोरिटीज का भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे आपके आपके कैरियर पर किसी और चीज का प्रभाव ना पड़े और आप अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान दे सकें और अपनी सफलता आप प्राप्त कर सकते। तो ये सारी बातें थी जो आपको बतानी थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हम किस तरीके से अपने कैरियर, अपने भविष्य को हम बना सकते हैं। आपको किन किन बातों को, खास बातें जो रहती हैं, उनका ध्यान किन किन कैसे हमें रखना चाहिए, इस बात का भी हमने इस कार्यक्रम में ध्यान दिया है।
0: बिल्कुल साथियों, और देखिए सबसे बड़ी बात जो समझ में आई है कि आपको जो अच्छा लगता है, आपके मन को जो अच्छा लगता है, जिस काम को करने में आपकी रुचि है, वही आपका करियर है। जहां जिन लोगों से या जिस जगह से आपको लगाव है, उनसे अगर बात करने में आपको अच्छा लगता है और आपको लग रहा है अगर कि यही हमारा करियर है और यहां से हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना हम कर सकते हैं, तो आप बेझिझक होकर उस काम को आगे कर सकते हैं। लेकिन भटकना आपको कहीं भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जहां भटके वहीं आपका करियर भी भटक सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को केंद्रित करें, अपने लक्ष्य को एकदम से निर्धारित करें, यहां वहां बिल्कुल मत देखें, अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दें। साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपको एक नई जानकारी के साथ, नई बातों के साथ फिर से मिलेंगे हम इसी कार्यक्रम में। आज का ये कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय, सुझाव, अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा, लिखकर या फोन के माध्यम से। अगर आप लिखकर हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगैला के पास ओरछा।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 92 19 20 77 49। श्रोताओं, हमारा यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, तो अगर हमारे श्रोता साथी यूट्यूब से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वे हमें यूट्यूब पर जाकर रेडियो बुंदेलखंड सर्च कर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाकर भी आप हमें अपनी ओर खींच सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो सबसे पहले जो वीडियो डलेगा वो आपके पास जरूर आएगा। तो इस तरह से हमारा और आपका जो संबंध है वो अच्छा बना रहेगा साथियों, और आपके महत्वपूर्ण सुझाव भी हम तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आप इस कार्यक्रम से चलते हैं क्योंकि अगले कार्यक्रम का हमारा समय भी हो रहा है। तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दे जाने की इजाजत। नमस्कार।

तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाए, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाए।

श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं आपके खास कार्यक्रम अम्मा के चौके में। श्रोताओं आप तो जानते ही होंगे कि जब बात अम्मा के चौके से आतेगी तो अपन के मुंह में एकदम से पानी आ जाते हैं। आहा का बात है, एकदम लगन लगा थे वो कि अब तो कछु बढ़िया सी रेसिपी बनावे को मौका अपन के बीच में आ गया है। वो सो अपन को जो मौका गंवाने नहीं है और अपन को अम्मा के चौके से कार्यक्रम में जो सब सीखने पर है, अपन को जानने पर है, वो काहे कि अगर अपन उनको अच्छी अच्छी डिशेस बना वो सीखने आए हैं तो अम्मा के चौके कार्यक्रम बड़े ध्यान से सुनने आए हैं। वो काहे कि हम आपको देखो पतो है वो कि समय समय पे नई नई चीजन के बारे में आप गत कराउत रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे कि की प्रकार से नई नई चीजें आप बना सकत होगे, उनमें कितनी मात्रा में कौन सी चीज डालने हैगी, कितने जनन के लाने बनाने हैगी और संगे में अपन जो भी ध्यान रखत हेंगे कि किचन की साफ सफाई यानी अपने रसोई घरन की साफ सफाई भी अपन सबके लाने के देख जरूरी रहेगी। कहे की देखो सभी चीजें जो होती भी साफ सफाई से लगी हुई होती, अपन अपनी किचन की साफ सफाई जरूर करवे, बिना साफ सफाई के तो अपन को कोनो काम सफल नहीं होते। अगर अपन गंदगी से चीजें बनाऊ थेंगे तो अब वे कीटाणु जो है वे खाना में चले जाऊते और फिर खाना के माध्यम से भी अपने पेट में चले जाऊते और जी के माध्यम से फिर का होते कि अपन हो रहे पेट से जुड़ी भी जितनी भी समस्याएं होती ना वे सब अपन को तहीं से शुरू होती। तो अपन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है वो श्रोताओं। अपन अगर चूल्हे पे खाना बनाऊ थेंगे तो बढ़िया से राखा माखा भर लेवे, चूल्हे को अच्छो पोत देवे, झाड़ू अच्छी तरह आसपास लगा देवे, गंदगी ना रन देवे और फिर अपन अब बनावे की बारी याद हैगी, है ना। तो बनावे के लाने भी अपन को सावधानी रखने के बढ़िया अपने हाथन खो साबुन से अच्छी तरह से धो लेवे, अपने अगर नाखून बड़े हो गए तो नाखून को गंदगी निकाल लेवे। वैसे तो नाखून बड़े नहीं रखे चज्जी, लेकिन अगर फिर भी आपके नाखून बड़े रखने को शौक है वो आपको हमारी बहनन को खास तौर से, तो नाखून की गंदगी तो कम से कम साफ कर लेवे, सुबह गंदगी हटा ले भी। कहे की अपन जब अगर नाखून में गंदगी रहेगी तो आटा मारते ही अपन वाले सब्जी काटते ही मसाले पीसते ही जिनके माध्यम से फिर वह गंदगी जो है अपने आटा में चली जाऊ थेगी और फिर वह अपने खाना में मिक्स हो जाऊ थेगी। तो अपनी बहने वैसे तो हमारी बहने बहुत समझदार हैंगी, हर कोई समझदार होते है वो, कहे की हम को ऐसे तो है नहीं है कि एक नए बच्चा को

सिखा रहे हुए कि तुम्हें खाना कैसे बनाना है, वो तरीका अपन अपनी बहनन से बात कर रहे हो, तो कम होते कि कभी कभी अपन हो रहे ये सब चीजें भूल जाते ही, है ना, भूल जाते कि खाना कौन तरीका से बनाना चाहिए। तो अपन खाना बनाबे के पहले कछु कछु बातन को जो ध्यान रखने आते हैं, तो वे हम बीच बीच में आपको याद दिला दे उठेंगे कि देखो भैया अपन को खाना बनाना है तो अपन को साफ सफाई को विशेष तौर से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अब बात हो गई अपने हाथ पांव की, कि हाथ पांव अच्छी तरह से धो कर साबुन से और फिर अपन रसोई घर में जावे। दूसरी बात आउट हैगी, एक रसोई में एक कपड़ा रहूत है जिसे अपन सब चीजें पोंछा थेंगे, याद है, हाँ वो ही कपड़ा जिखो अपन पकड़ हुए गिलाने भी इस्तेमाल कर रहे थे, यानी करैया मरैया अगर हम हो तो उखो पकड़ लेते ही, और संगे में अगर आटा के हाथ अपन ने धोला तो उखो वही हाथ से अपन मतलब उन्हें हाथन को वही कपड़ा से अपन पोंछ भी लेते। तो वो कपड़ा जो रहते है उनको बड़ो महत्व होते है भैया, उनको महत्व कह रहे थे कि वो कपड़ा के माध्यम से अपन 17 काम कर रहे थे, जैसे हाथ पोंछ लाए गैस पे अगर कछु बगर गो तो तुरंत अपन ने वो भी पोंछ लो, और संगे में आटा मड़ो अगर रखो तो अपन ने वो कपड़ा को का करो कि फटकार के और वो आटा पे भी डाल लो, तो अब कितनी तो गंदगी हती है फिर भी अपन ने वो इस्तेमाल कर लो। तो एक चीज जो हम आपसे बार बार कहेंगे कि वो कपड़ा को हमेशा धो कर रखवे, जब भी अपने खाना बन जावे अपन फ्री हो जावे और जो और साबल्ला धोवे के बाद अपन फ्री हो जाओगे, सो उस टाइम पे का करवे कि उठ के आराम से ऊखो तनक से कुनकुनी पानी कर लेवे, कुनकुनी पानी में तनक निरमा डाल देवे या साबुन डाल देवे और फिर उनको बढ़िया से अच्छी तरीका से धोके और धूप में बढ़िया सुखा लेवे, ताकि उनके अंदर बहुत सारे कीटाणु जो रहेंगे वे मर जाएंगे और फिर आपके लाने शाम के लाने या सुबेरे के लाने या कल के लाने भी तैयार हो जाए कपड़ा, फिर से आपको इस्तेमाल करो, 17 जगह हाथ पहुंचो फिर कपड़ा पहुंचो जो भी गंदे आए आपको खराब वो करो। तो साथियों कार्यक्रम में अपन आपसे बात कर रहेंगे आज अम्मा के चौकी में, और हम हैं आपकी संज्ञा आपकी रेडियो दोस्त वर्षा, आप तो जानते ही होगी हमें और नहीं जाना था तो एक बार जान लो, हमारा नाम वर्षा है वो जो कि रेडियो पे आपकी संज्ञा बातचीत करते रहेंगे हमेशा। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आप सबने सुना हुई है लिट्टी चोखा, बिल्कुल लिट्टी चोखा हर को जाना थे गो, और लिट्टी चोखा जो है काफी सारे लोगों को पसंद भी आउ थे गो, तो अब तो खास तौर से जो बुंदेलखंड में भी बनन लगो है लिट्टी चोखा, और अगर लिट्टी चोखा जो है चूल्हे पे बनाओ तो और भी स्वादिष्ट मानो जाउ थे गो। तो लिट्टी चोखा में जो चोखा बनत है वो ई के बारे में कई बार हमारे पास मैसेज आया हमारे श्रोता साथियों के, उन्होंने पूछी भी है कि चोखा बनावे को सही तरीका का होते ही, चोखा कैसे बनाए चाहिए लिट्टी बनावे के संगे, चोखा मतलब अलग तरीका को होने चाहिए स्वादिष्ट होने चाहिए। तो देखो स्वाद की बात तो ऐसी है कि स्वाद जो होते है वो आपके हाथन में होते है, और हमारी सब बहनन के हाथ में माँ अन्नपूर्णा को वास है, वो तो भी जो भी बनाए वो स्वादिष्ट ही बनाती हैंगी, ठीक है। तो आज अम्मा की थाली में अपन पारंपरिक तरीके से चोखा विशेषकर से बैगन और आलू को चोखा बनाने की विधि को, जो कि बहुत ही सरल विधि हैगी और बहुत ही स्वादिष्ट विधि हैगी, उसको सीखेंगे अपन, और जो लिट्टी या दाल या चावल इन सब के संगे अपन खा सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि लिट्टी के संगे खावे, आप दाल के संगे भी चोखा को खा सकते हैं और चावल के संगे भी चोखा को खा सकते हैं, ठीक है। तो चोखा बनावे की विधि अपन जानेंगे कार्यक्रम में अम्मा के चौकी में, तो उससे पहले कहना है तो एक छोटो सो मनोरंजन अपन और है कर ले भी, फिर उसके बाद अपन लौट के आएंगे, और कितों नहीं रही हो साथियों मनोरंजन के तुरंत बाद हम आ रहे हैंगे आपके बीच में, और अपन जो बातचीत कर रहे हैंगे वह बातचीत अपन को करने हैगी चोखा के बारे में, कि चोखा अपन को कैसे बनाने है वो, तो अब आप कितों नहीं जाओ तनक देर इंतजार करो, तब तक आप जो गीत के संग मनोरंजन करो, हम फिर से लौट के आ रहे हैं आपके कार्यक्रम अम्मा के चौकी में।

0: मांग नहीं मांग खूब करियो ब्याह, मांग नहीं मांग खूब करियो ब्याह, खूब सबको भला, खूब सबको भला, आज काल चल लो दहेज को।
1: अपना रेडियो अपनी बातें, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सब जनन को हम बहुत ही बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम अम्मा के चौकी में। और अब अपन बात करते हैं चोखा बनावे की। जीखो आप दाल या चावल के संग भी खा सकते हैं, तो चोखा बनावे के लाने श्रोताओं सबसे पहले अपन खुद देखने हैं कि सामग्री इनमें का का लगने हैगी। सुबह सामग्री के बारे में अपन चर्चा कर ले उठेंगे। तो उससे पहले हम भूल कहेंगे श्रोताओं, आपने जो गीत सुनो है वो गीत खो गा रहे थे दिनेश मस्ताना जी और दहेज को लेकर जो गीत है, तो जो कि आजकल बहुत चलन चल गया है वो बिना दहेज के कोनो ब्याह नहीं हो रहे हैंगे। सो लेके अवेयरनेस यानी जागरूकता वालों जो गीत है तो सो आप सब जन ने सुने हैं। गीत के बाद अपन चोखा बनावे की विधि में एक बार फिर से उठेंगे और अपन जाना थेंगे कि चोखा बनावे के लाने सामग्री अपन को काका जाने हैगी। सो सबसे पहले तो बैगन, ठीक है, एक बड़ो सो बैगन चाने अपन को, जो करिया वाय बैगन आउ थे भट्टा, हाओ भट्टा चाने है वो बड़ो सो, जो कि भरता बनावे के लाने अपन ले आउ थे बाजार से। और कई सारे साथी अगर अपने खेतर में लगाए होंगे तो वे खेत से भी एक बढ़िया बड़ो सो का भट्टा ले लेवे। आलू अपन को चाने 3 से 4 और मध्यम आकार के ले लेवे, उबले भय आलू होवे, ठीक है। अब इनमें टमाटर भी चाने का है कि चोखा अगर बनाने हैं तो खटमिट हो तो तनक हुई चाहिए। सो 3 से 4 मध्यम टमाटर अपन ले लेंगे, बढ़िया लगे। प्याज अपन 1 प्याज ले लेंगे और वो भी कटी हुई बारीक काट लेंगे उनको, ठीक है। लहसुन अपन को 6 से 8 कलियां बारीक उखो भी काट लेंगे। अदरक की में अगर बात करें अपन तो 1 इंच को टुकड़ा अपन ले लेंगे, मतलब छोटे से जो टुकड़ा आउट है जो 1 इंच को अपन को लगवे उखो ले लेंगे और बारीक काट लेंगे या किस लेंगे, किस भी लेकर के कई सारे साथी जैसे अपन चाय में बनावे के लाने नहीं वो किसनी रखे रहते हल्की सी, सो उसे अपन 1 इंच को टुकड़ा जो है अदरक को किस लेंगे। अब बात आतेगी हरी मिर्च की। सो हरी मिर्च 2 से 3 बारीक कटी भाई अपन को हरी मिर्च जाने हैंगी। धनिया पत्ती तो देखो बिना धनिया के तो कछु होते ही नहीं है, सो अपन धनिया पत्ती ले लेवे उनको बढ़िया धो के, बिना धोए नहीं आपको धो के बढ़िया बारीक को काट लेवे। और धनिया पत्ती तो ऐसी है कि आप जितनी डाल दो उतने का आपके लाना सही है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, हिसाब से डाल लेवे। सरसों को तेल आपको चाने 1

दो बड़े चम्मच जो होते हैं कच्चो तेल जो रहता है वो, और कच्चो मतलब तेल जो है अपन ले में सरसों को तो ज़्यादा सही है वो, ठीक है। और उखो अपने स्वाद के अनुसार ही ले में, वैसे तो एक से दो बड़े चम्मच ले भी, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं। अब इन्हें देखो खट मिठो बनावे के लाने कहे कि चूखा जो होते हैं वो बड़ो खट्टो मीठो सो होते हैं वो, खट्टो एकदम झकास वाव जी को अपन कहेंगे, झकास वाव स्वादों में आना चाहिए। सो इके लाने अपन को जाने नींबू को रस, नींबू है 1 चम्मच उसमें से रस निकाल लो। लेकिन जो साथी वैकल्पिक है मतलब आप डालो चाहो तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं है नींबू तो आप नहीं भी डालो, कहे कि अपन टमाटर डाल ही रहेंगे, लेकिन टमाटर से कहे कि नींबू जितनी खटापन ही नहीं आती, सो नींबू आप डाल सकते हैं, नहीं डालने तो आपकी अपनी मर्जी हैगी। अब बात आती है कि नमक की, तो नमक आपको डालना है वो स्वाद अनुसार, कहे कि देखो हम तो आपको नमक नहीं बता सकते हैं, है ना।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। खेत खलियान कार्यक्रम में हम समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और हम अपने किसान साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो हमारे किसान साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने सोचा था, कई दिनों से हम सोच रहे थे कि जब से हमने मोटे अनाज के बारे में सुना है, चूंकि जिसे मिलेट्स कहा जाता है, तो जैसे ही हमने सुना तो हमारे दिमाग में कई सारी चीजें चलने लगी थी कि इस पर एक्सपर्ट कौन हो सकता है, चूंकि यहाँ पर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, निवाड़ी जिला बना, नया नया जिला बना हुआ है, मिलेट्स को लेकर यानी मोटे अनाज को लेकर बहुत कम जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं, बहुत कम सुनने के और देखने को मिल रहे थे। तो हमने ऐसे ढूंढते ढूंढते हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर आज शालिनी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप मिलेट्स पर कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और खास तौर पर जो 40 देश हैं वहां पर उनके वॉलंटियर भी हैं, उनको सिखाती भी है, कई सारे अनुभव उनके पास हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम
1: धन्यवाद जी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मुझे चांस मिला कि मैं आप लोगों के सामने इस माध्यम के जरिए मैं आपके पास अपने बारे में बताने के लिए मुझे मौका दिया गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शालिनी मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और थोड़ा अपने बारे में हमारे श्रोता साथियों को बताएं कि आप किस तरीके से मोटे अनाज यहाँ पर जो कहा जाता है किस तरीके से आपने काम शुरू किया, कैसे आपके जिज्ञान में, कैसे आपके मन में ये जिज्ञासा उठी कि हमें मोटे अनाज पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। मैम
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी मोटे अनाज जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, लोगों को लगता है कि सोया भी मोटा अनाज है, मक्का भी मोटा अनाज है, पर जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो हमारा मोटा अनाज या मिलेट जो है वो है ज्वार, बाजरा, रागी, और इसके अलावा हमारा कंगनी, कुटकी, तामा, ये सब हमारे अनाज होते हैं जिसको हम मिलेट की कैटेगरी में डालते हैं, मिलेट की श्रेणी में डालते हैं जिसको हम। अब बात आती है मेरी कहानी की, जहां से मैंने ये शुरुआत की थी, ये बात है 2015 की, जब मुझे बहुत सारी शारीरिक समस्याएं हुई थी और मेरा वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, मेरा वजन 130 के आसपास पहुंच चुका था और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो डॉक्टर्स भी नहीं बता पाते थे कि क्यों ठीक नहीं हो रही है। उस टाइम पे मुझे एक आयुर्वेदाचार्य मिले, आयुर्वेदाचार्य मतलब जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि आप गेहूं खाना छोड़िए, सारी जो समस्या है वो गेहूं से आ रही है
0: जी।
1: और आप यकीन मानिएगा मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि गेहूं अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो मैं क्या खाऊंगी। उस टाइम पे बहुत संघर्ष हुआ मेरे लिए, बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आई, पर मुझे जो लगा, मुझे ये लगा कि अच्छा अगर मुझे गेहूं नहीं खाना तो मतलब मैं कुट्टू खा सकती हूँ, मैं ज्वारी खा सकती हूँ, मैं बाजरा खा सकती हूँ, पर मुझे मिलेट्स के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी
0: जी।
1: पर मुझे फायदा बहुत हुआ गेहूं छोड़ के, और जब मेरा वजन कम से कम 60-70 किलो कम हो गया
0: जी मैं।
1: और जब मैं वापस अपने काम पे लगी, और क्योंकि मैं शुरू से कुकिंग वर्कशॉप की लेती थी, उससे पहले मैं एज अ राइटर जॉब करती थी एडवर्टाइजिंग में दिल्ली में, दिल्ली में मेरा जॉब था तो लाइफ बहुत हेक्टिक थी। उसके बाद जब मैंने कुकिंग क्लासेस शुरू की, क्योंकि मास्टर शेफ में पार्टिसिपेट किया था तो कुछ राउंड क्लियर किए थे, तो मुझे लगा कि मुझे यही काम करना चाहिए, पर मेरी जो हेल्थ थी वो मुझे साथ नहीं देती थी, मेरे शारीरिक समस्याएं मुझे सपोर्ट नहीं करती थी
0: जी।
1: लेकिन जब मैं ठीक हुई और जब मैं वापस अपने काम पे लगना स्टार्ट किया, तब मैंने ये निर्णय लिया कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मिलेट के बारे में ही बात करनी है
0: जी,
1: क्योंकि इसकी जागरूकता कच्छ में किसी को भी नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: किसान भाई जितने भी हैं हमारे देश में, अगर हम उनकी बात करें तो उनको ये बताया जाता था 1950 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ
0: जी मैम,
1: तब से लेके अब तक सिर्फ यही सबको लगता है कि गेहूं तो उगाना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खपत है वो गेहूं की है, सबसे ज्यादा खपत जो है वो धान मतलब चावल की है। बहुत कम लोगों को ये अंदाजा होगा कि अगर मिलेट उगाया जाए तो उससे बहुत फायदा सिर्फ हमारे को अपनी शारीरिक समस्याओं से नहीं, हमारे किसान भाइयों को भी बहुत फायदा होगा उससे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर आप देखेंगे गेहूं और धान को उगाने के लिए, गेहूं और चावल को उगाने के लिए 8 से 10 महीने हमें इंतजार करना पड़ता है।
0: जी मैम,
1: हमें उसमें बहुत सारी दवाइयां भी डालनी पड़ती हैं, हमें उसकी खास उसको हमें खास पानी का, सूरज की रोशनी का, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और कहीं कुछ आपदा आ जाती है या कोई ऐसी प्राकृतिक कुछ ऐसी आपदा आ जाती है जैसे कि बाढ़ है या सूखा है, तो वो पूरी की पूरी फसल ही गड़बड़ हो जाती है।
0: जी।
1: लेकिन मिलेट के केस में जिसको हम मोटा अनाज बोल रहे हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कुटकी, सामा, हरा सामा, छेना, ये जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं, इनको उगाने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और तो और बीज बोने से लेके फसल काटने तक, जिसको हम ग्रोइंग साइकिल बोलते हैं इंग्लिश में,
0: जी मैम,
1: वो ग्रोइंग साइकिल सिर्फ 65 से 90 दिन का होता है।
0: जी।
1: तो आप ये समझिए कि अगर हम मिलेट उगा रहे हैं या हमारे किसान भाई अगर मिलेट उगा रहे हैं तो वो साल में 3 से 4 बार इस चीज की फसल को मार्केट में, बाजार में बेच सकते हैं।
0: जी मैम।
1: तो उनका 4 गुना फायदा है, और इसीलिए मोदी जी ने, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस मुहिम छेड़ी हुई है कि सिर्फ मिलेट के बारे में ही बात करनी है।
0: राइट मैम।
1: जी
0: मैम, एक चीज और जानना चाहेंगे, अगर मैम बुंदेलखंड की बात करें, और बुंदेलखंड में खास तौर पर हम देखते हैं और सुनते चले आ रहे हैं कि सूखा से हमारे किसान साथी परेशान रहते हैं, सूखा ग्रसित रहते हैं, यहाँ पर किस तरीके से हमारे किसान साथी मोटे अनाज को उगा सकते हैं और क्या फायदा उनको होगी मैम?
1: देखिए, अगर बुंदेलखंड में ये समस्या है कि इतना सूखा पड़ता है,
0: जी मैम,
1: तो मुझे लगता है कि मिलेट से बेहतर तो कुछ भी नहीं है फिर।
0: जी मैम।
1: और उसमें अगर आप पता करें, जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आरडो है, एशियन अफ्रीकन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या अपिडा है, या बहुत सारी और ऐसी फैसिलिटीज हमारी सरकार ने दी हुई है कि अगर कोई, अगर किसी के पास अगर जमीन है और कोई अगर मिलेट उगाना चाहता है तो उसको बहुत सारी सब्सिडीज है, बहुत सारी फैसिलिटीज सरकार दे रही है।
0: जी मैम।
1: इसकी जागरूकता के लिए मुझे लगता है कि अभी किसान भाइयों को जो है खुद से आगे चल के देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं।
0: जी मैम।
1: आप इस मीडियम के थ्रू, आपके थ्रू, हमारे थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं, या जैसे पास के जो शहर है जैसे कि बुंदेलखंड से पास में झांसी है, ग्वालियर है, भोपाल है, वहाँ पर इतने फार्मर्स मार्केट लगते हैं।
0: जी मैम।
1: तो वहाँ के जो फार्मर्स है, वहाँ पर जो लोग आ गए हैं उस प्लेटफॉर्म पे, उन फार्मर्स के साथ भी मिलकर हम ये चीज बोल सकते हैं कि आप जो बुंदेलखंड के जो किसान लोग हैं या जो अंदर कस्बों में जो किसान हैं, उनको हम कैसे इस चीज के लिए जागरूक करें कि मिलेट उगाने से बहुत फायदा भी है और वो आपकी मिट्टी के लिए एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि परफेक्ट अनाज है एकदम।
0: मैम, यहाँ पर चूंकि हम भी रेडियो बुंदेलखंड काफी दिनों से खेती किसानी से जुड़ी बातचीत करते हैं, और हम जब गांव में फील्ड में जाते हैं तो हम जो पुराने जो लोग रहते हैं, जो दादा परदादा रहते हैं, आज जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पहले जो कुटकी उगाई जाती थी या फिकार

0: उगाई जाती थी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती थी, लेकिन अब समय चूंकि बदल रहा है और अब उनके बेटे या बेटे के बेटे उस तरीके के अनाज उगाने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको समस्या आती है कि अब मोटे अनाज यदि हम उगाते हैं तो हमारी पैदावार भी घट जाएगी, हमारी पैदावार के साथ साथ मार्केट की जो समस्या आती है कि मार्केट में हम कहां पर कैसे और कौन इसको खरीदेगा, ये थोड़ी समस्या आती है, इस पर थोड़ा प्रकाश डाले मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर मैंने जैसे बोला था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, वो उसने हमारे देश में बहुत कुछ बदल दिया
0: जी।
1: और इसमें जो अगली जनरेशन जो पैदा हुई है, जो जो भी 1950 के बाद जो जनरेशन है, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में गेहूं और धान भी देखा है, तो वो एकदम से नहीं बदलेंगे या उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि कुटकी या कंगनी या ज्वार बाजरा कितना लाभदायक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि हमने क्या किया है गेहूं के साथ। हम हर जगह गेहूं अगर उग रहा है और अगर गेहूं का इतना डिमांड है, मतलब इतनी पैदावार हो रही है गेहूं की, तो क्या वो बिना दवाइयों के मुमकिन है? मुमकिन नहीं है,
0: नहीं है मैम।
1: आज की तारीख में हम गेहूं को उगाने से पहले ही मिट्टी में दवाइयां डाल देते हैं,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमें पता है कि इसमें दिक्कत आएगी तो वो दवाई उसको उसी टाइम से ठीक कर देगी,
0: बिल्कुल मैम।
1: फिर हमें वो ज्यादा पैदावार भी चाहिए तो हम उस हिसाब से उसको दवाइयां खिलाते हैं उस पौधे को। तो आज की डेट में क्या हो गया है, जो हमारी दादी और नानी के टाइम पे जो गेहूं था
0: जी,
1: और जो हमारे टाइम पे गेहूं है वो बहुत अलग है
0: जी,
1: ना। वो गेहूं अभी हमें लाभदायक तो रहा नहीं, बल्कि वो हमें और बीमारियां दे रहे हैं,
0: बिल्कुल मैम।
1: तो अगर आप देखेंगे, हम मुझे गांव का इतना नहीं पता, पर अगर मैं आपको बताऊं, मैं शहरों के लोगों के साथ दिन रात मेरा वर्कशॉप चलती है, मैं उनके साथ बात करती हूँ, आज हर घर में कैंसर पहुंच चुका है, हर घर डायबिटीज, ये तो खैर बहुत छोटी चीज है, हम तो डायबिटिक कैपिटल ऑफ इंडिया बन चुके हैं
0: जी मैम।
1: आज हर घर में महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, बच्चों की हाइट भी बढ़ रही है, बच्चों को लड़कियों को 8-8 साल में 9-9 साल में पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है
0: जी मैम।
1: ये सब कुछ हमारे खान पान की वजह से है, मैं ये नहीं कहूंगी सारी गलती गेहूं की वजह से है, पर जो हमने गेहूं के साथ किया है
0: जी मैम,
1: वो हमें रोकना बहुत जरूरी है।
0: मैम एक चीज और थोड़ा यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, आपसे थोड़ा अनुभव आप जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने जब गांव वालों से बात की, खासतौर पर गांव वालों के साथ जब हमने डिस्कशन किया इस चीज को लेकर, इस बात को लेकर, तो उन्होंने भी स्वीकार किया है कि खासतौर पर आज जो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी या अन्य बीमारी, जो डायबिटीज जैसी बीमारियां जो आज हम देखने को और सुनने को मिल रही है, वो बहुत चौंकाने वाली हो रही है, लेकिन वो ये कहते हैं कि मैम हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमारे बच्चों को पालना है, पढ़ाई के लिए महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो वो खेती में छोटी सी जाना खेती है नहीं, थोड़ी ही खेती में क्या वो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, संसाधन उस तरीके के है नहीं। समस्या यहाँ पर ये आती है मैम कि यदि उनके लिए मोटे अनाज, जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें मोटे अनाज पर ज्यादा फोकस करना होगा, जिस तरीके से बहुत सारे एक दो राज्य ऐसे हैं जहां पर जैविक खेती सिर्फ कराई जाती है, केमिकल वाली जो हम लोग खाद इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल मना कर दिया है, वहां पर सरकार ने वेल लगा दी है, तो क्या हमारे देश में इस तरीके की कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सकती है जिससे हमारे किसान साथी उस चीज को करने में और उनको फायदा हो सके उसको करने में, तो इस तरीके की पॉलिसी पर आपका क्या मानना है मैम?
1: मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पॉलिसीज बन चुकी हैं पहले से
0: जी,
1: सिर्फ उसकी जागरूकता और उस पॉलिसीज के बारे में बताने का काम रहता है अभी। तो मैं इस माध्यम, इस रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप अपने ग्रुप्स में जहाँ पर भी फार्मर्स मार्केट लग रहे हैं, जहाँ पर जैविक अनाज जैविक सब्जियां बेची जाती हैं, वहां पर बहुत आपको ऐसी चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे आपको ये प्रोत्साहन दिया जाएगा कि आप कैसे मोटे अनाज को उगाएं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार आपस में जुड़िए
0: जी मैम।
1: और

0: रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से हम तक पहुंची
1: जी मैम,
0: और हम आपको हम देखते हैं कि हम कहां आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।
1: जी मैम,
0: जैसे जहां तक मुझे पता है भोपाल और ग्वालियर दो ऐसे शहर हैं और झांसी अपने आप में बहुत बड़ा शहर है।
1: जी मैम,
0: तो यहां पर जरूर जैविक खेती जो हो रही है जो किसान भाई कर रहे हैं उनको हम साथ में लेके ये कर सकते हैं कि भाई हमें अगर मोटा अनाज उगाना है तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है।
1: जी मैम,
0: इस चीज की सुविधा और इस चीज की जागरूकता ये दोनों पहुंचाई जाए किसानों तक तो मुझे लगता है कि बहुत आसान है और बहुत फायदे का कहते हैं ना कि फायदे की बात रहेगी क्योंकि गेहूं तो सभी उगा रहे हैं अभी।
1: राइट,
0: और अभी अगर आपको मैं बताऊं मैं जैसे इतने सारे लोगों की क्लास में वर्कशॉप में मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंपनीज आते हैं जो मिलेट किसानों के साथ उगा रहे हैं
1: जी।
0: तो अगर कोई किसान भाई अगर इच्छुक हैं कि हमें मोटा अनाज उगाना है और उनको अगर मेरे से एक सेशन चाहिए तो मैं बहुत मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ और मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि मैं जो लोग सक्षम है ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मिलेट्स की कंपनीज है और जो ढूंढ रही है किसानों को जो उनके लिए मिलेट्स को उगा पाए तो मैं उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने का काम करने के लिए बहुत मतलब मुझे मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस करूंगी खुद को।
1: बिल्कुल मैम,
0: तो ऐसा हो सकता है आसानी से हो सकता है कि हम लोग आपस में जुड़े
1: जी मैम
0: और लोगों को कनेक्ट करें जितना कनेक्ट करेंगे उतना माध्यम हमें मिलते चले जाएंगे।
1: बिल्कुल मैम, और हम एक चीज और मैम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि एक और समस्या हमारे गांव वालों की रहती है जब हमने बात की कि हम जैविक पद्धति से खेती क्यों नहीं करते हैं तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। आज हम ये देखते हैं कि भारत में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है अगर खेती की बात करें कि 18% 50% के ऊपर लोग खेती पर निर्भर ही रहते हैं लेकिन समस्या ये आती है क्योंकि खेती जो जमीनी मिट्टी है जो उनकी उर्वरा शक्ति है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि हम एक साल अगर जैविक खेती शुरुआत करेंगे तो उसकी जो लागत लागत के साथ साथ उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन क्षमता बहुत ही कम होती है। इसके बारे में मैम आपकी क्या सलाह है, क्या राय है किसान साथियों को?
0: बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि मेरा मतलब मैंने खुद देखा है कि मेरा जो ससुराल है वो हिमाचल प्रदेश में है और वहां पर सेब उगाए जाते हैं तो जब हम वहां पर उनको बोलते हैं कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए फर्टिलाइजर केमिकल का इस्तेमाल करना क्योंकि वहां पे सब किसान है, सब लोग जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस में सब किसान है, वहां पे हर घर में किसान है तो वो लोग बोलते हैं कि हमें कम से कम भी 10 साल लगेंगे इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में। ये बात बिल्कुल सच है
1: बिल्कुल।
0: लेकिन खुशी की बात ये है कि जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं ना तो मोटे अनाज के लिए हमें जमीन का उपजाऊ होना जरूरी नहीं है, आप उसी जमीन में बहुत आसानी से मिलेट्स की पैदावार कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको पता हो पहले कि समय में क्या होता था, क्रॉप रोटेशन होता था, जैसे मान लीजिए अगर मैंने अपनी जमीन में जवार उगाया किसान चाहे पढ़े लिखे नहीं थे पर उनको इतना समझदारी थी कि जवार के बाद वो क्या उगाए कि मिट्टी में जो भी पोषक तत्व ज्वार को उगाने के लिए गया है वो वापस आ जाए तो वो दूसरी फसल वैसी उगाते थे कि मिट्टी में वो चीज वापस आ जाए, है ना
1: जी।
0: वो सारे जैसे नाइट्रोजन है फॉस्फोरस है ये सब चीजें मिट्टी में वापस आ जाए। मिलेट एक ऐसा अनाज है कि अगर आप उसको उगाएंगे 2-3 साल तक तो आपकी जमीन भी उपजाऊ बन जाएगी जल्दी।
1: ये हमारे किसान साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है, खासतौर पर जो हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हमारी मैडम ने कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है कि हमारे किसान साथी अगर मिलेट्स की खेती करते हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं तो दोबारा जो आज हम हमारे दादा परदादा जो खेती करते थे, जो हमारी खेती सेहतमंद होती थी वो दोबारा लौट आएगी। ये बात आप जरूर गौर फरमाइएगा इस चीज पर। मैडम और क्या कहना चाहेंगी? जी मैडम,
0: मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि बहुत काम अभी बाकी है, हमें बहुत बहुत काम

0: करना है। हर लेवल पे काम चल रहा है मिलेट की जागरूकता, चाहे वो एक बड़ी से बड़ी कंपनी हो या एक गांव में रहने वाला एक किसान भाई हो। हमें हर हर तबके तक, हर घर में ये बात पहुंचानी है कि मिलेट से सिर्फ शारीरिक जो स्वास्थ्य का लाभ नहीं है, मिलेट से हमारे देश की इकोनॉमी पर, हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति है और हर किसान भाई की आर्थिक स्थिति, हर हिंदुस्तानी की आर्थिक स्थिति के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम मिलेट को आगे बढ़ाएं। मतलब ये तो हमारे देश ने या यू नो यूनेस्को ने या बाकी जो भी हमारे और ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने मिलके इसके लिए काम किया है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, अभी इतना काम तो हो चुका है कि पूरी दुनिया में हर देश में लोगों को इतना समझ में आ गया है कि मिलेट है क्या। पहले लोगों को नहीं पता होता था, अभी हर घर में किसी बच्चे से भी अगर आप पूछेंगे तो उसको इतना पता है कि अच्छा मिलेट कोई अनाज तो है जिसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक साल, दो साल या तीन साल लगेंगे अभी हमें हर घर में पहुंचाने में, पर ये बहुत ही शुभ संकेत है हमारे देश के लिए जिससे बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया और सुंदर रूप लेने वाली है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध हो, हर तरीके से हमारे देश के अनाज हमें बहुत आगे लेके जाने वाले हैं।
1: मैम बस हमारा आखिरी सवाल ये है कि किसान साथी अगर मिलेट्स की खेती करता है तो उनको इस तरीके के बीज कहाँ से उपलब्ध होंगे और बाजार उनको कैसे प्राप्त होगा?
0: बीज बहुत आसानी से उपलब्ध है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने जो भी कस्बे हैं, जिले हैं, जो किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं उनसे जुड़िए, वो आपको बीज से लेके आगे तक की सारी चीजों के लिए बहुत सहायता करेंगे, क्योंकि बहुत अवेयरनेस हर लेवल पे हर तरीके से हो रही है अभी। तो आप पहले तो उन किसानों से जुड़िए, या आप मतलब अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर जितने हमारे हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में जितना हो सकता है मैं आपको कनेक्ट करवाऊंगी। वो किसान भाई आपको ये जरूर बता देंगे कि उसको मार्केट तक हम कैसे लेके जाएंगे। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास जमीन नहीं है और जिनके पास वो माइंड है कि हम मिलेट को कैसे मार्केट कर सकते हैं, तो वो किसान भाइयों को ही ढूंढ रहे हैं। वो ऐसे किसानों को ढूंढ रहे हैं जो मिलेट उगाना चाहता है या जो मिलेट उगा रहा है। तो हमें सिर्फ जागरूकता और सही चैनल के थ्रू आगे बढ़ना है और आपको रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और हमारे किसान साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आपकी सेवाएं हम समय समय पर लेते रहेंगे और खास तौर पर जो भी हमारे किसान साथियों के सवाल मैम रहेंगे वो आपसे आपको हम परेशान करेंगे और परेशान के साथ साथ आपको विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमने रखा गया है तो आपको समय समय पर मार्गदर्शन देना होगा हमारे किसान साथियों के लिए।
0: ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपने किसान भाइयों के काम आ पाऊंगी और बिल्कुल आप मुझे इस चीज में आपको कोई भी समस्या है, कुछ भी आपको पूछना है या बीज कहाँ से मिलेंगे या कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ। मैं अपने किसान भाइयों को भी ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बुंदेलखंड में बहुत बढ़िया तरीके से मोटा अनाज उगाया जा सकता है और बहुत अच्छे से आपको इसकी आर्थिक लाभ मिल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज की जागरूकता और थोड़ा सा ऐसे किसान भाइयों से कनेक्ट होने की जरूरत है जो जैविक खेती करते हैं, जो मिलेट के बारे में जानते हैं, वो आपको कनेक्ट करेंगे। उसके आगे जो भी मिलेट से संबंधित, जो भी आपको मोटे अनाज से संबंधित सवाल है, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ।
1: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना कीमती समय निकालकर हमारे किसान साथियों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान साथियों को ये महत्वपूर्ण जानकारी उनके जीवन में, उनकी खेती किसानी में बड़ी मार्गदर्शन के रूप में प्रदान करेगी। और साथ साथ में चूंकि हमारे मैम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर चूंकि हमारे

0: जो किसान साथी हैं बड़े दिल से कनेक्ट हैं हमारे रेडियो बुंदेलखंड पर। जो भी समस्या रहती है, अगर पानी भी नहीं बरसता है तो वो कहते हैं कि सर आपने मौसम की जानकारी नहीं बताई है और बताइए कि पानी कब बरसेगा, नहीं तो हम फिर अपने पंपों से पानी देना स्टार्ट करें। तो काफी कनेक्टेड रहते हैं और वो समय समय पर ये जानकारी भी, क्योंकि कई दिनों से मैम हम तलाश रहे थे इस चीज के बारे में, बहुत सारे हमारे किसानों के सवाल आए हुए थे, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बताया था तो हम समय समय पर ये मोटे अनाज के बारे में जानकारी दे, लेकिन उस तरीके की जो आज आपने ऑथेंटिक जानकारी, जो एक एक बारीकी से आपने समझाया, जो हमारे किसान साथियों को समझ में आ गया होगा और वो उस पर काम करना अब स्टार्ट कर देंगे।
1: धन्यवाद धन्यवाद,
0: थैंक यू।
1: मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके काम आ पाई और मैं कुछ योगदान कर पाई इस चीज में।
0: थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
1: थैंक यू थैंक यू।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलियान में। और मित्रों, अभी आपने साली मैम को सुना और साली जी ने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी मोटे अनाज के ऊपर कि बुंदेलखंड क्षेत्र में किस तरीके की संभावना है, कहां पर मार्केट हो सकता है, कैसे हम इसको लगा सकते हैं, क्या क्या इससे फायदा हो सकता है हमारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए सानली मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता साथियों, आप समझ ही गए होंगे कितनी महत्वपूर्ण जानकारी ये आपके लिए, हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें आशा है कि ये जानकारी पाकर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेंगे मिलेट्स को लेकर, यानी मोटे अनाज को लेकर। साथियों, हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलियान कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा 9219207749, या फिर व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं 9219207749। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी, जो भी आपको मन में सवाल चल रहे हैं या फिर आपको लगता है मिलेट्स के ऊपर यानी मोटे अनाज के ऊपर आपको कुछ जानकारी और उपलब्ध करनी है या चाहते हैं, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें ताकि हम सानली मैम को या आपके सवाल हम भेज सकें और उनके जवाब आपको मिल सकें। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम से जाने का। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। तो आओ दोस्तों, देर न करे तुम्हें कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनते हैं प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनते हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन लगी नजरिया मैया खोल दो, मैया खोल दो ये द्वार की बरसन।

गई ललक हमारी, खोल पलक झलक दई थी जय, मिट गई ललक हमारी। पान बतासा ध्वजा नारियल, पान बतासा ध्वजा नारियल, से भर गई।

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन लगी नजरिया मैया खोल दो, मैया खोल दो जे द्वार की कबरिया।

देखो दोस्तों, जब कितना प्यार हो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लव है। ये गीत को गा रहे थे दिनेश सोनी जी। आ दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे सुनते हैं अगले साथियों की गायब है गीत को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, माँ के चरणों में अर्जी कुकू लगाए। देखो कितना अच्छो जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रही थी राजा बद्रेली जी। अब दोस्तों आओ सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, कायर उठो केसर उठो फूलन को लंगरवा कायर उठो। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे भैया कृष्णकांत कुशवाहा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनाते हैं अगले साथी के गाय भाई गीत को।

हो जा दयाल कृपाल महामाई अब की बीर। देखो दोस्तों कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जनन ने सुनो, ये देवी गीत को आनंद लो है। ये गीत को गा रहे थे भैया गोविंदास कुशवाहा जी। सो आओ दोस्तों गोविंदास भैया जी के गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

बिल्कुल दोस्तों, मैया भक्त खड़े पुकारे दूर में हुमा। देखो दोस्तों कितनों प्यारो जो भजन अपन सब जन ने सुनो, भजन को आनंद लो है। और दोस्तों ये भजन को जो गा रहे थे वे गा रहे थे किशोरी लाल कुशवाहा जी। अब दोस्तों ये गीत के बाद फिर से सुनते हैं अगले साथी इनके गायब है गीत को।

देखो दोस्तों, जो कितना बढ़िया गीत अपन सब जनन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। ये गीत खूब गा रहे थे भैया मनीराम मंचला जी। और अब मनीराम भैया मंचला जी की ये गीत के बाद हम आप सब जन को बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को जाबे को समय हो गया है। तो दोस्तों हमें दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात है कार्यक्रम में ए बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अब करो भरोसा हर पे, अब करो भरोसा हर पे, करो भरोसा।

उमरिया हरि भजन करो,

कड़गो भरबे परचा कठिया कड़गो कटिया कड़गो भरबे परचा ज्योति कर घर घर में।

नहीं जात वह हाट बाजार नहीं जात है मेला, वही जात है हाट

0: हरियो नाहे रान कर पे करन दोला के
1: अरे सीधे पने कौन।

बहाना बहाना बहाना।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभकल में। शुभकल कार्यक्रम मित्रों हम अपने श्रोता साथियों के लिए 2008 से लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। शुभकल कार्यक्रम आने वाला कल किस तरीके से हो, और खास तौर पर शुभकल कार्यक्रम में हम जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे बातचीत को हम लेकर आते हैं और चर्चा भी करते हैं। अब वास्तव में लग रहा है हमारे लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे श्रोताओं को कि वास्तव में ये जलवायु परिवर्तन ही है, क्योंकि बेमौसम बारिश, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं कम बारिश, कहीं सूखा पड़ना तो कहीं अत्यधिक बारिश होना, कहीं बाढ़ आना तो कहीं बिल्कुल मिट्टी ही नहीं गीली होना। ये सारे मौसम चक्र का बदलना, हवाओं का बदलना, ये सारी चीजें जो आती हैं वो जलवायु परिवर्तन से होती हैं। एक बार फिर से पुनः हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम जलवायु परिवर्तन का एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, क्यों बदलना है, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। इसके बाद साथियों हम लोग जलवायु परिवर्तन की जब बात आती है तो बात आती है हमारी खेती किसानी से जुड़ी बातचीत आती है। तो खेती में किस तरीके से हम रासायनिक पद्धति से जो हम खेती अपनी करते हैं उसको ना करके हम अपनी जैविक पद्धति से खेती किस तरीके से कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद बनाकर किस तरीके से हम लोग अपनी खेती में अपनी बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से हम केचुआ खाद बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से रासायनिक खादों से हम छुटकारा पा सकते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में पूरा मिश्रण होगा।

0: जलवायु परिवर्तन जानेंगे, क्यों लोग कंपोस्ट खाद बनाना पसंद नहीं करते, क्या कारण है, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि क्या है, बैरू भौजी को भी सुनेंगे। तो देर नहीं करते हैं और आपको सीधा ले चलते हैं, हमारे एक रिपोर्ट हमने बनाई है तो उस रिपोर्ट को हम सुन लेते हैं, बुन लेते हैं और इसके बाद हम आपको एक कंपोस्ट खाद बनाने की विधि, चर्चा क्यों नहीं करते हैं, इस पर तमाम बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारी सी रिपोर्ट को।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
2: पृथ्वी के ध्रुवों पर हजारों साल से जमी बर्फ पिघल रही है, दुनिया भर में जंगल आग में भस्म हो रहे हैं, समुद्र का बढ़ता जलस्तर आने वाले सालों में कई बड़े शहरों को निगल सकता है, कहीं सूखा है तो कहीं आए दिन बाढ़ और तूफान आ रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं, करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधे तौर पर असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं आप भी जल्द इसकी चपेट में आ सकते हैं। समस्या इतनी गंभीर है कि पृथ्वी के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आई? जलवायु परिवर्तन आखिर क्या है जिसकी हर तरफ इतनी चर्चा हो रही है?
3: जलवायु परिवर्तन या फिर कहें क्लाइमेट चेंज का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है, लेकिन इस वृद्धि की वजह क्या है? ये तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी को प्रकाश और गर्मी सूरज से मिलती है। सूरज की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो उनमें से कुछ किरणें परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, और कुछ किरणों को हमारे वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। वायुमंडल को आप पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक कवच कह सकते हैं। सूरज की जिस गर्मी को वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसें परावर्तित होने से रोक लेती हैं, उसी से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। वरना बेहद ठंड के कारण पृथ्वी पर न सिर्फ इंसानों का रहना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि खेती भी आसान नहीं होगी और फिर दुनिया की आबादी का पेट भरना मुश्किल होगा।
2: तो इसका मतलब ये है कि जिन ग्रीन हाउस गैसों को हमारे सामने खलनायक के तौर पर पेश किया जाता है वो तो बहुत जरूरी हैं। हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन तभी जब उनकी मात्रा हमारे पर्यावरण में संतुलित हो। समस्या उस वक्त पैदा हुई जब इंसानी गतिविधियों के चलते कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने लगी, और जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ी तो वो सूरज की ज्यादा गर्मी को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और यहीं से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की समस्या शुरू हुई।
3: छह मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। इंसानी गतिविधियों से जो भी CO2 पैदा हुई है उसकी बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल है, यानी कोयला, डीजल, पेट्रोल और जमीन से निकलने वाली गैसों का इस्तेमाल। खासकर इसकी शुरुआत 1750 में हुई जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तब से अब तक हमारे पर्यावरण में CO2 की मात्रा 30% बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जितना CO2 हमारे पर्यावरण में इस समय है उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। समस्या इसलिए और बढ़ गई क्योंकि कार्बन सोखने वाले जंगलों को अंधाधुंध तरीकों से काटा जा रहा है।
2: विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि व्यापक औद्योगिकीकरण शुरू होने से पहले के मुकाबले अब पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कई रिसर्च बताती हैं कि 1850 से लेकर इस सदी के आखिर तक पृथ्वी के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का बदलाव हो सकता है, और अगर ये बदलाव 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया तो हम बर्बादी के

पर पहुंच सकते हैं। तापमान बढ़ने का नतीजा है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ की चादर तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के तौर पर हम देख रहे हैं। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जलस्तर में 3.6 मिलीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश और बड़े शहर समंदर में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान की वजह से मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अपने साथ सूखा, बेमौसम बारिश, बाढ़ और तूफान ला रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोका जा सके तो ये सुरक्षित होगा, लेकिन दुनिया के देश अब भी नफा नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यावरण को बचाने के लिए जितनी गंभीरता और पक्के इरादे की जरूरत है, वो अब भी दुनिया भर की सरकारों में नहीं दिखता। इसलिए बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और जलवायु संरक्षण के लिए कड़े कदमों की मांग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम और आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलिए, विमान की बजाय ट्रेन से चलिए, नई नई चीजें खरीदने से बचिए, पुरानी चीजों को फेंकिए मत, खराब हो जाए तो ठीक कराइए, इस्तेमाल करिए, पेड़ लगाइए और हो सके तो अपनी सब्जी भी खुद उगाइए। यकीन मानिए, आपके इन छोटे छोटे कदमों से हम पृथ्वी की बड़ी समस्या के साथ निपट सकते हैं।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। और अभी आपने इस रिपोर्ट को सुना और समझा कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा, किन किन कारणों से हो रहा, इस तमाम प्रकार की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों सुनी। अब बात आती है कि किस तरीके से हमारे किसान साथी अपनी खेती में बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से कंपोस्ट खाद बना सकते हैं, क्या कारण है लोग नहीं बनाते हैं, क्या कारण है कंपोस्ट डालने से अपने खेतों में हिचकिचाते हैं हमारे किसान साथी, ये तमाम प्रकार की बातों को हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन इससे पहले हम लेते हैं विराम, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है। और इसके बाद सुनेंगे साथियों बैरू भौजी को।

0: कलुगा, ओए कलुगा, जाने कितने कितने चलो यार धुन पारी से मेरे इतना तसला भर के रख ला होगा मैंने, अब जाने कितने निकलेगा कन्वीस रोब में की खोटी रो।
1: अरे भाजी काया फोन चिल्ला रही, कहा बात है?
0: कहा क्या है लाला जी, कहा बजा रही? तुम्हें तो राम दे चार आंखें लग गई, देख तो मैं गोबर को तो दसला उठ बैठाई और कह रहे कहा बजा रही।
1: अरे भौजी जा कह रहे काय को चिल्ले आ रहे।
0: अरे लाला जी तुम्हें ही भगया और आम दिए मौका पे आ गए, मैंने एक जो तसला उठवा दूं तो कल को जाने कितने निकल गए भुनसारी से, भाई देखा तो मैं बाप हो तो।
1: अरे भौजी तू तो तसला उठवाने?
0: अरे हाओ लाला जी ये न हमने कही नहीं है, तुम सही मौका पे आ गए, को लगा दूं हाथ ने काको तो मैं डाल रहा हूँ अभी बुलाद भरो एक तसला उन निकले जब भैंस काको तो अब मैं कहा बताऊँ लाला जी अपनी देखा।
1: हाँ तो भौजी तुम ऐसी कैसी बात कर रही, मैं तो उठवाने तो है ले।
0: लेकिन लाला जी तुम निकल आए थे को मुझे तो बड़ी चलो ठीक रहो, मैं न दे आ रही थी जबकि तुम आ गए मुझे बड़ो अच्छो लगो कि कम से कम उठ तो लाओ मेरे।
1: अच्छा भाजी एक बात और बता कि तू घूरो तो दिखा तो नहीं है?
0: अरे लाला जी बजन बजन लग रहा हूँ, मैं बोल तो पा नहीं रही होंगी, मैं आ रही होंगी सो बता रही।
1: हाँ
0: और लाला जी मैं एक काम और कर दो, अब आ गए होंगे तो काको दिन को तो मेरी भैंस बंदी हैगी बाको में सानी करके रखे ही, बस सानी रख दो तुमने तो बक्के सीट
1: सुनो कर दो अलग में।
0: कहा कह रहे लाला जी रखे दे तारे, लाला जी तुमने तो ये नो नहीं कही, रख दो
1: देख लो भैया ऐसे करवा जाता अपने काम।
0: कहा कह रहे लाला जी?
1: अरे कछ नहीं भाई जाके आओ रखें दे।
0: हाँ हाँ तो ठीक है लाला जी। ओ लाला जी अब देख लो लाला जी आज सुधी तरह घुस गए होते, जो नहीं मैंने कही थी सानी तीस लो में पहले, हाँ सानी तो रख दी चलो ठीक है लाला जी।
1: हाँ भाजी कहाँ है बता?
0: अरे लाला जी कहाँ घुस गए का, कल का है वो होते?
1: अरे नहीं है वो अभी हाथों तो खेल करेगा बोल बोल सी तरह कभी समझाती नहीं है।
0: आपको मैं देखा तो आज बहुत खेला खेल ही खेल चलो को 24 घंटा पढ़ाई के लाने नहीं सुनस, रुक जाओ मैं देखा लाला जी धर रही थी भैंस को सानी।
2: अब भाजी धर तो दई थी खा ले बने,
0: इतने जल्दी खा ली थी मैं गोबर डाल के नहीं आ पाई,
1: अब तो भोजी तेना को डाल दे तो।
0: हाँ जा कहो कि मैंने डाल ही नहीं है, तुम पक्के काम चोर होंगे।

0: अरे भौजी ते तो ऐसी बात करत मुडार भी उनका बने खा ले पूरी जब मैं कह तो रहा।
1: चलो ठीक है अब कह रहे तो करे लेते में विश्वास। हो लाल आजू तुम कछ पूछ रहे थे बताओ का पूछ रहे थे।
0: भौजी बात जाए कि मैंने कुत्ते कर दे घूरे ना कुत्ते घूरे दिखा दे नहीं है तना के मन डरो। मैंने जासूजी को उठा ली थी भौजी को गोबर काहे के डेली दिन डर के आउते तो जात कहां जा पूछने थी मुझे
1: का कह लाल आजू मैं गोबर भरा थे वो को बताओ को भरा थे वो। वैसे मैं तो बहुत कम डारा था ये डाल दो तो हैगी
0: तो फिर तू घूरो का नहीं दिखा मैं तो जा पूछ रहा।
1: अरे लालाजी पहले तुम जो बताओ मैं भरत को है तो मैं अभी हल कही।
0: अरे भौजी जा मैंने कितने कही तू भरत है मैं तो जा कह रहा हूँ कि कम दिखात तुम्हारा घूरो।
1: अरे लालाजी कम वो जा से दिखात के मैं गोबर नहीं गई तो डायरेक्ट मैंने कही नहीं आ, तो मैं एक आध बिना डारत होते और पूरे की मैं खाद बना ली थी।
0: खाद बना ली
1: खाओ
0: कैसी खाद
1: ले लालाजी तुम्हें पता नहीं।
0: अरे मैं कहते जाना अगर जाना तो काम पूछते
1: राम भाई लालाजू यानी उमदा खाद बनन लगी।
0: अच्छा गोबर की बनन लगी
1: हाओ की मैं गोबर जाना नहीं लगा मैं एक भैंस हैगी भाई से इतना अच्छो खाद बन जाते कि मैंने को ना रासायनिक बालो कुल लाओ राम भाई
0: वो तो सो घूरे पे डाल द्रव करे सो बन जाओ तो खाद।
1: अरे लालाजू बानो तो फायदा नहीं रख जितने की बर्मी कम्पोस्ट में खेत का खाद में रहते
0: बर्मी कंपोस्ट।
1: अरे लालाजू बर्मी कंपोस्ट नहीं बर्मी कंपोस्ट जाको केचुआ खाद कत बर्मी वो इंग्लिश को हूँ थे वो सब मेमोरी मोड़ा कह रहा थी मैं तो केचुआ खाद हैगी वहाँ तो केचुआ खाद बना लू मैं गोबर ज्यादा नहीं लगा फिर भी मैं तो ब्लड डाल देती हूँ का एक भैंस हैगी कितने कराती एक भैंस को।
0: अच्छा जाके खाद बन जाते
1: हाओ
0: तो मैं केचुआ केचुआ रहते हैं।
1: अरे लालाजू केचुआ मोल लेने पर ज्यादा नहीं अपन कितनी बनाया अब मैं ऐसे कैसा बता दूं तुम्हें मैं एक आध ना फिर विधि तो बताऊंगी कि अपन इमें केचुआ छोड़ दे तो वे काकोती हंगा थेंगे तो उन्हीं से काकोती फिर वहाँ खाद बन जा तुम तो जाना थोंगे कि केचुआ अपने किसान में फूल थेंगे।
0: अब जा तो मैंने यानि पढ़ी थी दो की किताब में कहानियाँ की केचुआ खुद भी अपने किसान के दोस्त होते
1: का कह लालाजू दस की किताब में वो तो आ रही दो की क्लास से तुम कह रहे दस में पढ़े। अरे लालाजू कहाँ पढ़ रहे थे तुम दस से।
0: अरे भाई क्या सुना तो थे नहीं है तो दिमाग खराब हुआ कर दी थी
1: काय।
0: अरे भाई तो मैं कह रहा हूँ कि दो की क्लास में।
1: अच्छा अच्छा हाओ हाओ लालाजी दो की में पढ़ी भाई तो मैंने कही कि मैंने पढ़ी थी वो जमाने में क्या साल हो गई वो कम से कम 40 साल है तो भूल गई।
0: अरे भौजी अब जा बता तो मैं तो कहते तने कही गोबर तो फिर कम मैं कैसे बनाऊं खाद।
1: अरे लालाजू मैंने कही जहाँ मैं गोबर जाना नहीं लगा मैं गोबर डाल दूं और जो भैंसन को वो निकल रहा हूँ अपना रो रहा पटोरो वो वही मैं ढारा जाऊँ और मैं खेत में छोड़ दूं तो अपनो जो 30 दिन में बन के तैयार हो जाऊ थे 30-40 दिन में तो ऐसी खाद उमदा बन जाऊ ऐसी खाद बन जाऊ लालाजू खेत तो ऐसे लहलाए कि कहाँ बताए
0: तो ई खाद को अपन कर का सकत काय काय में डाल सकत।
1: अरे लालाजू आप सब्जी लगाए हो तो सब्जी में डाल दो और खेती में हो तो खेती में डाल दो चाहे कछु में डालो ई खाद को
0: तो बड़ी नोनी उमदा सी खा दे दीजा
1: तो फिर लालाजू आसो तो जरूरी बना दू।
0: हाँ जी तो फिर मैं अपनी एक गज्जा को गोबर अब खाद ही बनाऊ कर है।
1: हाँ तो फिर मैं और काम कर लो अपनो
2: साथियों। अभी आपने सुना बैरो भौजी को जिन्होंने हमें कंपोस्ट खाद के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। साथियों उसी तरह बुंदेलखंड के बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में लागत खूब लगाते हैं लेकिन पैदावार नहीं होती है जिस कारण से आज भी किसान के ऊपर लाखों रुपए का कर्ज है और लाखों किसान डिफाल्टर हैं। तो आइए चलते हैं कुछ किसान साथियों के पास और पूछते हैं उन किसानों से कि वो कंपोस्ट खाद से अपनी खेती क्यों नहीं करना चाहते।

0: सबसे पहले आप अपना नाम बता दो।
1: मेरा नाम है वृंदावन पाल।
0: वृंदावन पाल कहाँ से?
1: राधापुर से।
0: अच्छा वृंदावन जी, हम एक चीज जानना चाह रहे हैं कि जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आप जानते हैं, जानकारी है?
1: नहीं।
0: अच्छा आपको यह इस तरह की जानकारी अगर उपलब्ध कराई जाएगी तो आप सुनेंगे उसको?
1: सुन लेंगे।

0: हमारा नाम है रविशंकर दुबे।
1: अच्छा रविशंकर जी, एक चीज जानना चाह रहे हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है उसके बारे में आपको जानकारी है?
0: नहीं
1: नहीं जानकारी है?
0: नहीं।
1: रेडियो पर आप सुनना चाहेंगे इस तरीके की जानकारी आप?
0: हाँ हाँ

0: नाम राजेश जंसकान, ग्राम जुड़ियावाड़ी।
1: ये कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानते हैं, जो कंपोस्ट खाद होता है?
0: ना सर, ये तो मेरा नाम पहली बार सुना है।
1: अच्छा,
0: तो
1: आपने जानता ही नहीं है?
0: हाँ सर।
1: जैविक खाद के बारे में?
0: ना सर, ना इसका भी पता नहीं है सर।
1: अच्छा, आप जानकारी चाहते हैं?
0: हाँ, चाहते हैं सर, चाहते हैं।

0: हमारा नाम लालाराम यादव, निवाड़ी से।
1: अच्छा लालाराम जी, हमारा एक सवाल है कि आप कंपोस्ट खाद के बारे में क्या जानते हैं?
0: कंपोस्ट खाद के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हम बताना चाहते हैं, कंपोस्ट खाद वह खाद है जिससे तो न किसी प्रकार की आदमी को नुकसान होता है, न फसलों को नुकसान होता है, न जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और बढ़ती है, उससे कोई नुकसान होता है,

0: साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे वर्षा और आज हम बात करने वाले हैं कंपोस्ट के बारे में। जी हाँ श्रोताओं, कंपोस्ट एक प्रकार की खाद है जो जैविक पदार्थों के अपघटन एवं पुनः चक्रण से प्राप्त की जाती है। यह जैविक खेती का मुख्य घटक है। कंपोस्ट बनाने का सबसे सरल तरीका है नम जैव पदार्थ जैसे पत्तियां, बचा हुआ खाना आदि का ढेर बनाकर कुछ काल तक प्रतीक्षा करना ताकि इसका विघटन हो जाए। हमारी पारंपरिक खेती में कचरा, गोबर, जानवरों का मलमूत्र व अन्य वनस्पति जन कचरे को एकत्रित करके खाद बनाने की प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा मिट्टी में जैविक पदार्थों का विघटन करने वाले सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव प्रचुर मात्रा में होते थे। इस प्रकार जैविक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की प्राकृतिक उपजाऊ शक्ति का विकास होता था एवं मिट्टी अधिक समय तक अच्छी फसल देने में सक्षम रहती थी। खाद बनाने का कच्चा माल सभी किसानों के खेत में ही उपलब्ध होने के कारण उसे बनाने में विशेष खर्च नहीं होता था। जैविक खाद फसल और मिट्टी दोनों के लिए लाभकारी है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और अभी आपने इस चर्चाओं को सुना, लोगों के विचारों को जाना। खासतौर पर हमारे बौरव भाव जी ने भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से श्रोता साथियों को समझाया है, कंपोस्ट खाद के बारे में जानकारी दी इस कार्यक्रम के माध्यम से। और तमाम प्रकार के हमारे साथियों से उनके विचारों को सुना, जाना, समझा। हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी अब समझ गए होंगे। तो आने वाली फसल, क्योंकि इस बार पानी खूब दम से बरसो है वो, तो हमारे किसान साथी आगे की फसल की तैयारी अच्छी से हुई होगी, अच्छी पैदावार हुई होगी, पानी की समस्या नहीं आया है। लेकिन अब पानी की समस्या खत्म भई तो हमें दूसरी समस्या का आता है कि मिट्टी की जांच कराओ, संगे संगे उनको मिट्टी के संगे संगे नए बीजन को उपचार करवो, कौन से तत्व की कमी है, ये तमाम प्रकार की चीजें। और खासतौर पर कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को अगर आपने जान लो, समझ लो, सोच लो, तो हम लोग कंपोस्ट खाद बनाकर अपने खेतन में डाल सकते हैं और वहां से अपनी उपजाऊ शक्ति जो नष्ट हो चली जा रही है वह तनक ठीक ठाक हो जाएगी। हमें ऐसा है कि हमारे सभी श्रोता साथी इससे सहमत होंगे। अगर नहीं है तो हमें जो भी बता सकते हैं कि क्या नहीं है सहमत। अगर सहमत है तो हमें कार्यक्रम के बारे में जरूर फीडबैक दें। हमारे नंबर पर नंबर हमें 9219207749 और साथियों हमारा पतो है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओरछतला के पास ओरछा। तो आपके रेडियो साथी मनीष से लेते हैं ऐसे कार्यक्रम शुभ कल से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुशहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों कैसे हैं? मैं आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेज सब कुछ खुल गए हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने पाए हैं उन सभी स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जिन्होंने अपना, अपने देश का, अपने गांव का नाम रोशन किया है। साथियों हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के माध्यम से, हम तरह तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, उनके व्यक्तित्व विकास पर चर्चा करते हैं, कहां पर उनको कैरियर बनाना चाहिए, कैसे कैरियर बना सकते हैं, उस विषय को लेकर चर्चा करते हैं, साथ में उनकी आजीविका को लेकर चर्चा करते हैं। सफल जो हमारे साथी रहे हैं उनको भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं, सुनाते हैं आप लोगों को, और उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे श्रोता साथी ने अपने जीवन में बदलाव किया है। आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में, चूंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं और हमारे विद्यार्थी अब असमंजस में हैं, क्या करें, कैसे करें, कौन मार्गदर्शन देगा, बड़ी मतलब ऐसी विचित्र समस्या रहती है इस समय डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज हम पत्रकारिता के क्षेत्र में, चूंकि आज मास कम्युनिकेशन को देखा जाए, पत्रकारिता को देखा जाए तो काफी ब्रॉड होती चली जा रही है, काफी इसका विस्तार हुआ है। तो आइए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हमारे युवा साथी इसमें कैरियर बना सकते हैं, कहां अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर संजीव जी हमारे आज स्टूडियो में पधारे हैं। तो उनसे आज ज्ञान लेंगे, उनसे आज ऑप्शन ढूंढेंगे, उनसे आज जानकारी लेंगे कैसे हमारे युवा साथी अपना कैरियर, अपना भविष्य इस क्षेत्र में बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या संभावनाएं होती है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए डॉक्टर संदीप जी के पास आपको ले चलते हैं, उनसे हम वार्तालाप करते हैं इस विषय को लेकर। सर जानना चाहेंगे,
1: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी रेडियो बुंदेलखंड के श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, और रेडियो बुंदेलखंड का आभार अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित कर इस वार्ता के लिए सुअवसर दिया।
0: सर देखा जाता है कि अगर बुंदेलखंड की ही बात करें और बुंदेलखंड में खास तौर पर युवाओं का कैरियर, क्योंकि ट्वेल्थ के रिजल्ट घोषित हो गए हैं और नया सेशन भी चालू हो गया है, जुलाई से स्टार्ट हो जाता है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे युवा साथी
1: जी
0: ये जहन में उनके रहता है कि अब आगे क्या करें, किसमें कैरियर बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि उनका जो मन रहता है बड़ा चंचल रहता है। किसी दोस्त ने उनसे कह दिया कि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, साथ में अगर किसी ने कह दिया कि आप पढ़ाई करिए, आईएएस आईपीएस की तैयारी करिए, आपको क्या लगता है किस तरीके का लोगों को और खासतौर पर युवाओं को किस तरीके का चयन करना चाहिए? सर
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बहुत सटीक समय पे आपका प्रश्न हुआ है। बिल्कुल, मैं बुंदेलखंड रेडियो के सभी श्रोताओं में जो अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा प्रश्न किया कि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवा, विशेष तौर पर जो लोग 12वीं पास करने के बाद अपने कैरियर की राह पर खड़े हैं और उनको ये विवेचन है कि अब हम कहां जाएं, किस क्षेत्र को अपनाएं, ऐसे में उन युवाओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो मीडिया क्षेत्र को अपना सकते हैं। मीडिया क्षेत्र आज इतना व्यापक है और ये मीडिया डिसिप्लिन अपने आप में एक स्थापित डिसिप्लिन हो चुका है। देश के ना सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि अनेक राज्य विश्वविद्यालयों में भी पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभाग हैं, जहां पर की प्रशिक्षित अध्यापक लोग रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, वेब मीडिया, न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया

0: है
1: जी
0: और आपके पास जनरल अवेयरनेस है, आपके पास आत्मविश्वास है, तो
1: जी
0: आपको रेडियो जैसे मीडिया क्षेत्र में रेडियो जॉकी, रेडियो प्रोग्राम प्रेजेंटर, रेडियो प्रोग्राम कंटेंट राइटर, आप इसके आलेखक मतलब स्क्रिप्ट लेखक जिसको हम लोग स्क्रीन प्ले राइटिंग टेलीविजन में कहते हैं,
1: जी
0: इसी के साथ आपके लिए टेलीविजन माध्यम है, टेलीविजन में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, एक बहुत ही ग्लैमरस मीडिया है
1: जी
0: जहां पर ना सिर्फ आप टेलीविजन समाचार चैनलों में रिपोर्टर एंकर बन सकते हैं, आप उसमें करेस्पॉन्डेंट बन सकते हैं, आप उसमें पीस टू कैमरा कर सकते हैं, आप उसमें समाचारों की गैदरिंग कर सकते हैं, बल्कि आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप फ्रीलांस जो है डिजिटल फिल्म मेकर बन सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई बहुत महंगे कैमरे की जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है कि आजकल डिजिटल युग है, मोबाइल से लोग फिल्में बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और इंटरनेशनल, नेशनल और आपके रीजनल जो साइंस फिल्म फेस्टिवल होते हैं, यूथ फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में भी जो है सिनेमा और छोटे शॉर्ट वीडियो रील कॉम्पिटिशन होते हैं, वहां आप अपनी प्रतिभा, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन बहुत ही सटीक और सक्षम तरीके से कर सकते हैं।
1: जी
0: इसके बाद तीसरा अवसर आपके पास वेब मीडिया का है, जिसको हम कंप्यूटर मीडिया भी कहते हैं या इंटरनेट आधारित मीडिया कह लीजिए, हम कन्वर्जेंस मीडिया के नाम से भी उसी को जानते हैं, और डिजिटल मीडिया भी उसी को कहते हैं जो बड़े स्क्रीन से आज हाथ में सभी के बच्चों के, युवाओं के, विशेष तौर पे जो मोबाइल है वो
1: जी
0: उनका कन्वर्जेंस मीडिया है, डिजिटल मीडिया है।
1: बिल्कुल
0: मोबाइल में छोटे स्क्रीन पर बहुत सारे सीरियल्स देखे जाते हैं, फिल्में भी लोग डाउनलोड करके देखते हैं, बहुत सारी रील्स आती हैं, आप उसमें यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज हैं, एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स भी आप वहां देख सकते हैं, किसी पर्यटन क्षेत्र के बारे में अच्छे से आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं, आप किसी विषय को भी गहराई से समझा सकते हैं, आप एनिमेशन की सहायता करके भी, तो एनिमेशन, मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, वेब मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट, जिसको मुद्रित माध्यम जो हमारा 100 साल से भी अधिक समय से मुद्रित माध्यम है, वहां पर आप जो अखबार हैं, और अखबारों में ना सिर्फ अंग्रेजी या हिंदी अखबार है, आज तो क्षेत्रीय भाषाओं में अखबार है। अभी आप देखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो NEP 2020 आई है, उसके बाद से युवाओं को भाषाओं में हम व्यावसायिक या प्रोफेशनल शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारी बुंदेली भाषा हो, हमारी अपनी बघेली भाषा हो, हमारी अपनी अन्य चाहे हमारी निमाड़ की भाषा हो, मालवी भाषा हो, उन सब स्थानीय भाषाओं में आज बढ़ चढ़ कर होता है, और उसका सबसे सटीक उदाहरण हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की बिन्नू रदानी को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, धमाल वे खूब कर रही है और खूब लोगों ने सुन रहे हैं और उनके श्रोता जने भी खूब है, तो बिन्नू रानी से प्रेरणा लेकर हम सब युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे भी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के, अपने घर की, अपने बुंदेलखंड की माटी की बिन्नू रानी जरूर बने।
1: बिल्कुल सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र में भी कई सारे मतलब कोर्स चलाए जाते हैं, जैसे कि आपने बहुत सारे कोर्सों के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी, खासतौर पर 12th के बाद, जैसे कि इस क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा युवा साथी जाना चाहता है, तो कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसको आसान तरीके से और किस किस क्षेत्र में वो कोर्स किए जाते हैं, वो सर विस्तार से।
0: मैं आपकी पुनः प्रशंसा करूंगा, दूसरा प्रश्न भी आपने युवाओं के हित में बहुत सटीक और बहुत अच्छा किया हुआ है, मैं इस बात पर आने ही वाला था। हमारे मखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, जो अपनी इस समय द वीक और इंडिया टूडे रैंकिंग में टॉप 10 मीडिया इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, वहां पर ढेर सारे पाठ्यक्रम है, उनके विस्तृत विवरण के लिए मैं सलाह दूंगा कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के और रेडियो बुंदेलखंड के सुनने वाले श्रोताजन MCU.AC.IN वेबसाइट को विजिट करें। हमारे भोपाल मुख्यालय परिसर है, इसके अलावा हमारा दतिया परिसर है, हमारा बघेलखंड में रीवा परिसर है, और निवाड़ में हमारा खंडवा परिसर है, जो और इसी तरीके से हमारा MCU दर्शन टेलीविजन स्टूडियो भोपाल में, और रेडियो करमवीर भी है, तो वो भी युवाओं को प्रैक्टिकल करने के लिए है। रहा 12th पास विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का, तो हमारे पास बैचलर कोर्स जिनको हम UG पाठ्यक्रम कहते हैं, वो NEP आधारित 4 वर्षीय हमारे UG पाठ्यक्रम है। दतिया परिसर में हमारे पास BA जनसंचार पाठ्यक्रम है, और साथ ही BBA मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट हम दतिया परिसर में दे रहे हैं। खंडवा और रीवा परिसर में भी हमारे बैचलर पाठ्यक्रम है, और हमारे विश्वविद्यालय के बैचलर पाठ्यक्रम की हम बात करें तो हमारे पास बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारे पास बीए जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव

0: राइटिंग में है जिसको हम बीए जेसीडब्ल्यू कहते हैं, इसके बाद हमारे पास बीए इन मीडिया रिसर्च है, बीए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन है, बीएससी फिल्म प्रोडक्शन है, बीएससी मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स में है, बीएससी एनिमेशन में हमारे पास बीए मास कम्युनिकेशन है, बीए इंग्लिश जर्नलिज्म है, और हमने बीए हिंदी पत्रकारिता और अनुवाद प्रौद्योगिकी में भी इसी वर्ष से शुरू किया है, क्योंकि एनईपी में हमारी भारतीय भाषाओं पर काफी जोर दिया गया है। तो हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी ने, जो कि भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक थे, उस समय भी उन्होंने भारतीय भाषाओं पर बहुत काम किया था, और उसी से प्रेरणा करते हुए उन्होंने इस अकादमिक सत्र 2024 में भारतीय भाषा, विशेष तौर पर हिंदी एवं अनुवाद प्रौद्योगिकी, हिंदी एंड ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी का एक बैचलर को शुरू किया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम हमारे पास यूजी हैं, और इसी तरीके से हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम है जिसमें किसी भी स्नातक, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, होम साइंस का हो, फार्मेसी का हो, इंजीनियरिंग का हो, साइंस का हो, वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है। उनके लिए एमए प्रसारण पत्रकारिता है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एमए इन डिजिटल जर्नलिज्म है, एमए इन प्रिंट जर्नलिज्म है, एमएससी मीडिया शोध है, उसके बाद हमारा एमएससी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है, फिर हम एमसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी देते हैं, हमारे पास एमबीए इन मीडिया बिजनेस मैनेजमेंट है, हम एमबीए भी ऑफर करते हैं, एमए इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस भी है, एमएससी फिल्म प्रोडक्शन है, एमए मास कम्युनिकेशन है, हम लोग एमलिव और बीलिव पाठ्यक्रम भी ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ मीडिया पाठ्यक्रम, और हमारे पाठ्यक्रमों की एक विशेषता है कि हम लोग हर दो साल में उनको अपडेट करते हैं, उनको मीडिया इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप उनको अद्यतन करते हैं, अपडेट करते हैं, और हमारे यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं हाईली प्रोफेशनल हैं, और बीच में विशेष व्याख्यान है, मास्टर क्लासेस के लिए हम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को बुलाते हैं, विद्यार्थियों के एजुकेशनल विजिट के लिए उनको टेलीविजन स्टूडियो, प्रिंटिंग प्रेस है, रेडियो स्टेशन है, वहां की भी विजिट कराते हैं। बहुत जल्द ही हमारे दतिया परिसर के विद्यार्थी भी आपके रेडियो बुंदेलखंड का विजिट करेंगे, और हम इसी तरीके से अपने विद्यार्थियों के व्यवहारिक कामों के लिए उनको इंटर्नशिप पर भी अटैच करते हैं। तो समग्रता में हम मीडिया शिक्षा देने का प्रयास अपने परिसर में विद्यार्थियों को, ना सिर्फ हम मीडिया शिक्षण देते हैं बल्कि उनका चहुमुखी विकास 360 डिग्री उनका हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, उनकी जीके की तैयारी करवाते हैं, उनको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार कराते हैं, उनको हम कैमरा फेस करने की टेक्निक सिखाते हैं, पीस टू कैमरा उनको सिखाया जाता है, उनको वक्तव्य कला जो है उनको मंच पर जाकर अभिव्यक्ति की सिखाते हैं, बॉडी लैंग्वेज पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं कि आप अपने गेस्चर्स को, पोस्चर्स को, फेशियल एक्सप्रेशंस को, आई मूवमेंट्स को कैसे कर सकते हैं, आर्ट ऑफ इंटरव्यू कैसे करें, इंटरव्यू कैसे लें, इंटरव्यू कैसे दें, और आप में कम्युनिकेशन स्किल कैसे हो, इन सब बातों पर दिया जाता है। जैसे आपके रेडियो माध्यम में आवाज के आरोह अवरोह को, वॉइस मॉड्यूलेशन को, वॉइस कल्चर को, वॉइस डिलीवरी को, वॉइस को, क्योंकि कानों का माध्यम है तो इसमें आप रिपीट नहीं कर, इसमें आपके उच्चारण की शुद्धता चाहिए, भाषा की सरलता चाहिए, सटीकता चाहिए, साथ ही एक गति ऐसी चाहिए कि श्रोता आराम से सुन पाए, क्योंकि उसको दोबारा सुनने का, उसका अर्थ समझने का अवसर नहीं है जो प्रिंट माध्यम है। रेडियो माध्यम बहुत ही अलग माध्यम है, तात्कालिक माध्यम है, ताजा माध्यम है, क्योंकि इसमें इमीडिएसी का महत्व है।
1: बिल्कुल सर,
0: इसमें कोई भी अंतर्वस्तु को आप बहुत तत्काल और ताजा अपने श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है कि आपका श्रोता अपने काम करते हुए सुन सकता है, वो अपने ऑफिस में, यात्रा के दौरान, कार चलाते हुए, अपने दफ्तर में, इवन गृहिणी अपने घर में भोजन पकाते हुए रेडियो माध्यम को सुन सकती है। इसलिए आज रेडियो माध्यम जो हमारा 1927 में भारतीय प्रसारण सेवा से जिसकी शुरुआत हुई थी, आज भी लगभग 100 वर्ष होने को हैं, अगले तीन हम लोग 97 वर्ष रेडियो प्रसारण के भारत में कर चुके हैं, और रेडियो माध्यम आज भी पॉपुलर है, और हम देख रहे हैं कि देश में सामुदायिक रेडियो और कम्युनिटी रेडियो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो इन सब चीजों को प्रोत्साहित करती है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मध्य प्रदेश का पहला बुंदेलखंड क्षेत्र का रेडियो बुंदेलखंड स्टेशन से आज मैं इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आभारी।

0: और उन सभी श्रोताओं का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं जो आज इस रेडियो बुंदेलखंड के इस लोकप्रिय कार्यक्रम से जुड़े हैं।
1: सर इसमें से बस चूंकि आपका समय अमूल है, हम जानते हैं सर, इसमें से भी दो प्रश्न निकल के आते हैं। एक तो हमारे जो युवा साथी रहते हैं उनको मतलब ये रहता है कि हम लोग कोर्स करते रहें, साथ साथ में हमारे हाथ में जॉब होनी चाहिए, अच्छी से जॉब होनी चाहिए। दूसरा एक ये रहता है कि वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 वर्ष लगता है तो उतना समय नहीं है। ये शॉर्ट टर्म ऐसे कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं आपके माध्यम से कि वो उसको भी करते रहें और उसको अपने जॉब को भी देखते रहें, ये थे।
0: जी हम लोग चूंकि एक विश्वविद्यालय व्यवस्था के तहत है, उच्च शिक्षा अध्ययन के तहत हमारे डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, यूजी प्रोग्राम्स और पीजी प्रोग्राम्स हैं, तो उन सबकी अवधि, तो उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हमारा 1 वर्ष का है, माखला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के भोपाल परिसर में सांध्यकालीन पाठ्यक्रम है, जिनको आप mcu.ac.in पे जाके डिटेल विस्तृत विवरण देख सकते हैं। वहां पर हमारे डिजिटल मीडिया, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन जैसे भी कार्यक्रम है, और साथ ही हम जो है दतिया परिसर में बहुत जल्दी वहां पर अभी माननीय कुलपति जी एक कमेटी बना के उस पर तय कर रहे हैं कि यहां पर हम एक्टिंग में और रेडियो जॉकी भी यहां पर प्रस्तावित है, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं में बहुत प्रतिभा है। बिन्नू रानी जैसे हमारे जो आज 8वीं पास हमारी बालिका धूम मचाई हुई है, तो उससे प्रेरित होकर भी बहुत सारे युवाओं ने ये बात, मैं पिछले 2 दिनों से दतिया परिसर में हूं तो विद्यार्थियों ने चर्चा के दौरान ये बात सामने आई कि यहाँ पर फिल्म एक्टिंग को लेकर और यहाँ पर रेडियो जॉकी के पाठ्यक्रमों की काफी मांग है, तो हम लोग भोपाल में इस पर विचार करके जल्दी यहाँ पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम रेडियो जॉकी पे, आरजे पर और एक्टिंग पर करने पर विचार कर रहे हैं। वैसे विश्वविद्यालय समय समय पर अल्पावधि पाठ्यक्रम भोपाल में आयोजित करता है, अगर द्वितीय परिसर में आपके रेडियो बुंदेलखंड के संयुक्त तत्वाधान में सहयोग से यदि बहुत सारे युवा सहयोग करेंगे, अभिरुचि दिखाएंगे और आप यदि हमसे सहयोग चाहेंगे तो हम अपने दतिया परिसर में आपको रेडियो जॉकिंग और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के ऊपर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 दिन का, 1 हफ्ते का, 15 दिन का, जैसा भी आपको उपयुक्त समझे 2 हफ्ते का हम लोग कर सकते हैं। और बहुत ही उसमें मतलब विद्यार्थियों से हमारा कोई उद्देश्य कमाने का नहीं होता है, तो हम इसको निःशुल्क आयोजित कर सकते हैं, पंजीयन शुल्क वगैरह कुछ न्यूनतम उसमें हो सकता है, और उसके लिए बाकायदा विश्वविद्यालय से आपको जो भी प्रतिभागी होंगे उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा और रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए उनको जो भी आवश्यक सामग्री है, जो प्रशिक्षण सामग्री है, किट वगैरह है, वो भी हम देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपकी जब इस तरीके का प्रस्ताव आएगा तो हम लोग जरूर उस पर विचार करते हैं और हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के युवाओं के लिए यदि सेवा करने का अवसर रेडियो बुंदेलखंड के सहयोग से हमें प्राप्त होता है तो हम लोग को बहुत खुशी होगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने छोटे समय में ही बहुत सारी हमारे युवाओं को प्रेरणादायक बातचीत बताई है, साथ साथ में उनके कैरियर को लेकर, उनके कैरियर काउंसलिंग को लेकर, और खास तौर पर बहुत सारी ऐसी आपने बातचीत बताई है जिससे हमारे युवा साथी बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं और इस क्षेत्र में अपने भविष्य बनाने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: रेडियो बुंदेलखंड और यहाँ की टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभारी हूँ, और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र के भाई बहनों को, बिन्नुवन को हम यही कहूँ चाहूँ कि वे आए और जा क्षेत्र में बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, जैसे बिन्नु रानी धमाल कर रही, आप और रन भी धमाल करें, जय बात के साथ, जय राम जी।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और अभी आपने डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को सुना जो HOD है माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से, और उन्होंने बड़ी बखूबी तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे युवा साथी अपना कैरियर भविष्य बना सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उस विषय को लेकर विस्तार से चर्चा की है। बहुत अच्छी चर्चा इन्होंने की है इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझ गए होंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे युवा साथी अपना कैरियर अपना भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं इस क्षेत्र को लेकर, और आज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ रहा है, और खासतौर पर रील हुई और फेसबुक हुआ।

ट्विटर हुआ, साथ साथ में छोटे छोटे चैनल भी, हमारे यूट्यूबर चैनल जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत सारे खुल गए हैं। तो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाकर, अपनी सच्चाई को दिखाकर, क्योंकि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा संचार का माध्यम है, किस तरीके से अपना भविष्य बना सकते हैं, इस विषय को लेकर बड़े विस्तार से उन्होंने बात बताई है। इसके लिए डॉक्टर संजीव गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं कि ऐसे ही आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। साथ ही इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। कैसा लगा कार्यक्रम हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर। नंबर है हमारा 92-19-20-77-49 और हमारा पता है जो आप चिट्ठी के माध्यम से हमें अपने बातचीत को भेज सकते हैं। चिट्ठी पत्रिका का पता है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगला के पास ओरछा। और आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। और चल चलते आपको सुनाते हैं एक प्यारे से गीत को। नमस्कार।

अंदर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित।

से समझो नर और नारी सबकी हित में बात मुचारी फैला प्रदूषण बीमारी ध्यान से समझो नर और नारी सबकी हित में बात मुचारी दर्द को साचो झूठो।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी किसान पंच भैया बहनों को आपके रेडियो साथी मनीष की दो हाथ जुड़ के नमस्कार, राम राम पहुंच जावे। और किसान भाइयों कैसे हैं, हमें आशा है कि हमारे सभी किसान पंच भैया बहने अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान साथियों की जो इस बार ज्यादा बरसात को हो गई होगी, तो ऐसे बरसात में हमारे बहुत सारे किसान साथियों ने अपनी बोनी भी नहीं कर पाई है, तो कई किसान हमारे मायूस भी हुई हैं और कई किसान खुश भी हुई हैं कि अच्छा पानी गिर गया है और आगे की फसल को हम अच्छी तरीके से और जल्दी से और जो टाइम बुवाई करे थे वो टाइम पे अपन बुवाई कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैंगे, जो भगवान जरूरत हैंगे और भगवान के संगे संगे जो अपना पर्यावरण बदल रहा है वो कछु ना कछु तो विचार हमें जा पे करें चाहिए कैसे पर्यावरण बदलत है वो। और पर्यावरण बदलवे से जे सारे नुकसान देख देखो और सुन देखो मिलत हैंगे। लगातार कितने दिन से अपने यहाँ बरसात हो रही है और इतना पानी चारों तरफन पानी पानी दिख रहा है वो, तो खुशी की बात भी है और दुख जा बात को है कि किसान साथियों की मौनी नहीं भैयेगी। आज हम हमारे किसान साथियों के लाने गेंदे की खेती कैसे भी कर सकते हैं, कैसे फूलन को व्यवसाय भी एक व्यवसाय रहते वो और खेती भी रहेगी और जो अपने एग्रोफॉरेस्ट्री का था यानी कृषि वानिकी जो करते हैंगे, बीच बीच में अगर हम गेंदन के पौधा लगा देंगे तो सीजन भी आ रहा है वो और सीजन में वे गेंदन के जो फूल रहते हैंगे काफी अच्छो मार्केट भी हमें मिल सकता है वो, तो यही विषय पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन जासे पहले अपन एक नजर डाल लेते हैंगे मौसम चक्र पे, कैसे मौसम जो अपनो का कथ है वो, मौसम हमारे लाने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते है वो, तो मौसम की जानकारी भी अपन सुनो। तो सबसे पहले अपन बता रहेंगे मौसम की जानकारी, हमारे संग है वर्षा, तो वो मौसम की जानकारी हमें बताएं।
1: श्रोताओं नमस्कार, जब मौसम की जानकारी हम आपको पहुंचा पा रहेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। साथियों उड़द व मूंग की फसल में जड़ सड़न रोग देखो जा रहा है वो, अतः किसान भाई किलाने फसलन को निगरानी करत रहे, साथ ही में खेत में पाए जावे वाले रोकथाम हेतु 2.5 ग्राम मेनको जैव दवा की मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होने पे छिड़काव जरूर कर देवे। साथियों आवे वाले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80% बादल छाये रहने की संभावना हैगी। दिन के अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात को न्यूनतम तापमान 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना हैगी। हवा की औसत गति 14 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। आवे वाले 3 दिन के दौरान गरज चमक के संगे हल्की से मध्यम वर्षा तथा आसमान में 60 से 80

प्रतिशत बादल छाए रहने की संभावना भी हैगी। इको ध्यान में रखत भय सब्जियन में दलहनी तथा तिलहनी फसलन में जल भराव की समस्या हो सकत हैगी, अतः किसान भाई जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लेवे। संदे में कीट व्याधियन के लाने निगरानी को कार्य भी करत रहे, साथ में यदि जरूरी होवे तो किसान भाई दवा को छिड़काव करत रहे समय पे।

0: छिड़काव कर दें तथा पहले से लगाई गई धान की फसल में तना छेदक कीट की संभावना बनी हुई यदि दिखे तो कारटप हाइड्रोक्लोराइड 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें। जिन किसान भाइयों की टमाटर मिर्च तथा बैगन आदि की पौध तैयार हैगी वे इनकी रोपाई मेड़न पे यानी उथली क्यारियन पे करवे। बादल छाये रहने की संभावना को ध्यान में रखत भय कद्दू वर्गीय सब्जियों में फली छेदक कीट जैसे फली मक्खी फली बग और प्लम्ब मोथ कॉपर को भी देखने की संभावना बनी हैगी। ईखो नियंत्रण करवे के लाने प्रोफेनोफॉस 50 ईसी 1500 मिली हेक्टेयर खो 600-700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीवे। बैगन में फल छेदक कीट को प्रकोप भी देखो जा रहा है वो इके नियंत्रण हेतु क्लोनोफॉस 25 ईसी दवा की 2.0 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव साफ मौसम में कर दीवे। अरबी में कंद गलन रोग को प्रकोप देखो जा रहा है गो सुसाथियों इके लाने बचाव हेतु आपको मेटालेक्जिल मैनको जेब दवा को 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव करवे। पशुओं को ज्यादा हरी घास ना खान देवे नहीं तो अफरा की समस्या भी हो सकत हैगी। आसमान में बादल छाये रहने के कारण धूप की अवधि में कमी को देखत भय किसान भाई मुर्गी घरन में रात के समय 4-5 घंटा रोशनी की व्यवस्था कर देवे तथा इनके दानन में ऊर्जा और विटामिन की मात्रा बढ़ावे संगे में कैल्शियम भी मिलाकर दे देवे। तो किसान भाइयों आप सब जने सुन रहे थे जय जानकारी मौसम आधारित जानकारी और जय जानकारी आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ से रेडियो बुंदेलखंड के माध्यम से। नमस्कार।
1: तो साथियों अभी आपने हमारे वर्षा जी से मौसम आधारित जानकारी को सुना और जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो गेंदा की खेती पर हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसे चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर एक विराम लेते हैं, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और गीत के बाद आपको सीधा विषय विशेषज्ञ के पास ले चलेंगे और उनसे जानेंगे किस तरीके से गेंदे की खेती कैसे सावधानी उसमें बरतनी चाहिए, क्या क्या किस तरीके से हमें लगाने और विधि क्या हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

0: मेरी गोल्ड फार्मिंग, गेंदे की खेती कब और कैसे करना चाहिए, बेस्ट वैरायटी जो कि हाइब्रिड किस्में हो, इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कितनी दूरी पर पौधरोपण करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कैसे आप गेंदे की मेरी गोल्ड फार्मिंग की एडवांस खेती वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं, कैसे आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पौधे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, स्प्रे खाद और उर्वरक की मात्रा, इरिगेशन फर्टिगेशन के साथ साथ खरपतवार की रोकथाम, उत्पादन लागत मुनाफा और नेट प्रॉफिट के साथ साथ लाइफ साइकिल।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मेरी गोल्ड फार्मिंग वैसे कई सारे किसान करते आए हैं और कई सारे राज्यों में होती है, लेकिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात दो तीन चीजें हैं मैं ऐसा जानता हूं और हमने महसूस किया है, कई किसानों ने क्वेश्चन पूछे हैं। तो गेंदे की फूल की खेती के साथ कुछ दो तीन बातें जुड़ी हुई है जो सबको नहीं पता है, किसी को पता है किसी को नहीं पता है, तो मैं उस टॉपिक के बात करूंगा। वैसे बहुत आसान खेती है लेकिन उसमें पैसा कमाना और पैसा बनाना, जमीन को सुधारना, पेस्ट डिसीज कंट्रोल करना, वो सब साथ में उसके फायदे जुड़े हुए हैं। तो हम कहीं ना कहीं एक ही टॉपिक में दो तीन टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनना, अंत तक बने रहना ताकि आप कोई चीज मिस ना कर जाए। तो गेंदे की फूल की खेती मुनाफाकारक बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो है वो चीज है बुवाई का समय। तो बुवाई का समय कब करना चाहिए ताकि आपको रेट ज्यादा मिले, तो उसका एक जानकारी है। दूसरी वेराइटी, तीसरी चीज है उसमें थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट और उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पे बिजाई कब करें। किसान भाइयों, नॉर्मली गेंदे का फूल ट्रांसप्लांटिंग के बाद 40 से 45 दिन में पहला फूल दे देता है और उसके 15 से 20 दिन में 2 से 3 तुराई हो सकती है। कोई अच्छी ट्रीटमेंट चलती है तो पहले 45 दिन के बाद और 20-25 दिन आप आगे ले सकते हो। तो गेंदे का फूल आप मानो कि टोटल हम 60 दिन 2 महीने का पीरियड गिनते हैं कि प्लांटिंग से लेके पहला फूल और वहां से 15 से 20 दिन नॉर्मली, तो टोटल 60 दिन पकड़ते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा रेट कब मिलेगा, गेंदे के फूल की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा कब होती है? तो नॉर्मली ऐसा महाराष्ट्र में कहते हैं दशहरा से दिवाली के आसपास में अगर आपको फूल चाहिए तो आपको बिजाई करनी चाहिए। कब? तो कि आपको रक्षाबंधन में बिजाई करनी चाहिए। बहुत सिंपल गणित है, रक्षाबंधन के दिन आपने ट्रांसप्लांटिंग किया यानी कि ऑलमोस्ट आप समझो कि 15 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो 15 अगस्त से 2 महीना मतलब 15 अगस्त से 15 सितंबर 15 अक्टूबर यानी कि नवरात्रि दशहरा या दिवाली के आसपास आपको फूल मिलेंगे। ये नॉर्मल कहानी है। आपको गणपति भी चाहिए तो उससे और 15-20 दिन पहले प्लांटिंग करना पड़ेगा। तो नॉर्मल क्या होता है कि हिंदू कैलेंडर के आधार पे जो त्योहार आते हैं, हमारे रिलीजियस फंक्शंस जो आते हैं और उसके बाद शादियां शुरू हो जाती है, दिवाली के बाद शादियों का मौसम होता है। तो किसान भाइयों क्या है कि आपको 60 दिन पहले उसके प्लानिंग है। अभी इस बार की बात करें तो इस बार दशहरा दिवाली कब है वो कैलेंडर के आधार पे हमको प्लांटिंग सिलेक्ट करना चाहिए। तो अभी इस बार मान लो कि नवरात्रि की शुरुआत होती है लगभग 22 सितंबर से, लगभग 2 या 3 तारीख को दशहरा आएगा और उसके 20 दिन के बाद यानी कि अक्टूबर के एंड में आपको दिवाली आएगी। तो आपको समझना है सितंबर की 15 तारीख से लेके अक्टूबर की एंड तक ये डिमांड रहेगी पूरा 1.5 महीना। तो आपका प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए कब,

कि लगभग लगभग 20 सितंबर से शुरू होना चाहिए प्रोडक्शन। तो आपको कहीं ना कहीं 15-20 दिन चला या 1 महीना चला, जितना चला पाए, तो दिवाली तक खींच सके तो खींच लो। तो वैसे आप प्रोडक्शन का प्लान करती हो तो वहां से आप 60 डेज माइनस करो, या तो एग्जैक्ट फर्स्ट डे से तो 45 डेज माइनस करो, 22 सितंबर से 45 डेज माइनस। तो अगस्त और सितंबर के 22-22 दिन निकाल दो, तो 8 अगस्त के आसपास में आपने प्लांटिंग किया तो आपका गेंदे का फूल का प्रोडक्शन शुरुआत हो जाएगी नवरात्रि के अंदर, और फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ेगा। दशहरे के दिन आपको ज्यादा प्रोडक्शन आएगा, उस दिन डिमांड भी ज्यादा रहती है, और उसके बाद में दिवाली पे भी आपका थोड़ा बहुत प्रोडक्शन आएगा। तो ये एक आयोजन ऐसा है, सबका अच्छा हो गया तो हो सकता है कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप थोड़ा 2-3 हफ्ते में भी प्लांटिंग करते हो तो भी चलेगा। तो आप कुछ अगस्त के पहले वीक में करो, फिर अगस्त के दूसरे वीक में करो, एक अगस्त के तीसरे वीक में करो, ऐसा करोगे तो भी चलेगा। तो ऐसा करने से आपको एक बेनिफिट हो सकेगा, आपकी खेती में फूल लंबे अरसे तक थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े निकल के रहेंगे, तो मार्केट का फ्लक्चुएशन कम से कम लगेगा, तो आपको ओवरऑल रेट मार्जिन थोड़ा अच्छा मिल जाएगा। अभी उसका एक सिंपल गणित मैं आपको बताता हूं। एक एकड़ के अंदर मानो कि आपने प्लांटिंग किया है तो तकरीबन 6 से 7 हजार पौधे आएंगे। 6 स्क्वायर फीट में एक, यानी कि 3 से 3.5 फीट में लाइन आएगी और 1.5 से 2 फीट में आपको लगाना है। तो 6 स्क्वायर फीट में एक पौधा फैलेगा अच्छी तरह से, तो आपको 42,000 स्क्वायर फीट का एक एकड़ होता है, 43,560, लगभग आप ऐसा गिनते हो तो 7,000 जितने पौधे आएंगे। 7,000 पौधे में से मानो कि 1,000 पौधे को बॉर्डर इफेक्ट, मर गया, डिसीज लग गया, और नॉर्मली आपके 6,000 बच गए, मैं तो बोलता हूँ 5,000 ही बच गए, और 750 से 1 किलोग्राम वजन दे देता है, 4 से 5 टन वजन आता है, 50 रुपये किलो रेट भी रहता है, 100 रुपये भी रहता है। मैं तो ऐसा गिनता हूँ, एक नॉर्मल हिसाब करते हैं कि 4,000 किलो आपका प्रोडक्शन आया एक एकड़ में से, और आपको ज्यादा नहीं केवल 20 रुपये का एवरेज आया तो भी 80,000 का होता है। 10 रुपये भी रेट रहा किलो का तो भी 4,000 किलो का प्रोडक्शन आया, 40,000 का हुआ। ये सिर्फ 60, 65 और 70 दिन तक, ज्यादा से ज्यादा 80 दिन तक चलता है, उससे ज्यादा चलता भी नहीं। तो ये खेती एकदम जैसे मैंने बताया था पहले वीडियो में कि जैसे कैच क्रॉप है, आपने लगाया और तुरंत ले लिया, वो वाली है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बाबत ये है कि पहले नंबर पे आप कोई एक रंग का फसल मत करो, मल्टी कलर में करो, यानी कि नारंगी वाला भी करो और पीला वाला भी करो। तो मार्केट में जिसका डिमांड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, कभी क्या होता है आपको पता नहीं, हमको पता नहीं मार्केट कहाँ पे ट्रेंड करता है, लेकिन दोनों लेके जाओगे आपका बिक जाएगा। कभी किसानों को ऐसा भी होता है कि कोई दिन 2-2 रुपये किलो भी बेचेंगे, तो कभी ऐसा होता है कि कभी 100-100 रुपये किलो भी बेचेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया है वैसे आप 2-3 फ्लक्चुएशन को टालने के लिए, ये तो 2 कलर का करो, 3-4 हफ्ते में करो, जैसे मैंने कहा अगस्त के पहले वीक में किया, दूसरा थोड़ा सा मतलब 1 एकड़ का प्लानिंग है तो 1/3 एकड़ यानी कि 10-15 गुंठा में अगस्त में पहले वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा में अगस्त के दूसरे वीक में किया, फिर 10-15 गुंठा तीसरे वीक में किया, तो आपका गणपति से लेके दिवाली तक का प्रोडक्शन सेट हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हमको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस है, गणपति में रेट नहीं मिला उस दिन, उस साल सबका अच्छा हुआ था, फिर रेट नहीं मिला तो सबने निकाल दिया, हमने रखा था वैसे भी खर्चा कर चुके थे तो रखा था, तो दिवाली पे हमको रेट ज्यादा मिला तो हमारा पूरा खर्चा ले आया। ऐसा था कि हमने 2 रुपये किलो बेचा था और 120 रुपये किलो भी बेचा। तो ऐसा फ्लक्चुएशन टालने के लिए आपको कुछ डिसीजन भी बाद में लेने पड़ेंगे, लेकिन मैंने ऐसा कहा कि 2 वेराइटी करो, 2-3 टप्पे में प्लांटिंग करो तो आपको आसानी से हो जाएगा। इसमें वो खाद वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। गेंदे का फूल है वो इल्लियों को आकर्षित करता है, खास करके पतंग को अंडे देने के लिए आकर्षित करता है, तो उसमें हरी इल्ली आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो आप उसके लिए छिड़काव का कुछ प्रबंध कर सकते हो। नॉर्मली शुरुआत में थ्रिप्स आती है तो थ्रिप्स के लिए कोई प्रबंध कर सकते हो, ऑल्टरनेटिव ब्लाइट वगैरह आता है तो उसको कोई प्रबंध कर देते हो। खाद भी बहुत इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, लेकिन फिर भी डाली की फूटान, वृद्धि विकास, कलर क्वालिटी, उसके लिए आपको चाहिए तो आप एक एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास पहले से डाल दो, बाद में डालने का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फटाफट फटाफट फटाफट कार्यक्रम होता है इसमें, 60 दिनों में तो मतलब 45 दिनों में फ्लावरिंग आता है।

दिनों में पीक जाता है, फिर धीरे धीरे धीरे कम हो जाता है, 70-80 दिन में तो खत्म हो जाता है। मतलब पूरा 3 महीने की भी फसल है नहीं, 1.5 महीने में शुरू और 3 महीने में से पहले खत्म, ऐसी फसल है। तो आपको पहले से एक बैग डीएपी, एक बैग पोटाश डाल दो, मजबूती के लिए पोटाश भी जरूरी है तो कलर के लिए भी जरूरी है, और बाद में एक आध दो स्प्रे आप न्यूट्रिशन का ले सकते हो कि जब आप डाली फुटन की अवस्था में हो तो आप हॉस्टल ले लो कि ज्यादा से ज्यादा डाली फुटन का ग्रोथ जल्दी जल्दी आ जाए, और जैसे ही 40-45 दिन हो जाए तो एक माइक्रोग्रेन का ग्रेड आप दे सकते हो, जैसे महाराष्ट्र में ग्रेड 2 है, गुजरात में ग्रेड 4 है, जो आपके राज्य का आपका जो भी ग्रेड है आप माइक्रोग्रेन का स्प्रे कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो आप स्टेलर वगैरह ले सकते हो, जिसकी वजह वृद्धि विकास के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाए। वृद्धि विकास ज्यादा हो रहा है तो 0.34 का प्रयोग करो, अगर ऐसा नॉर्मल है तो कोई जरूरत है नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, फर्टिलाइजर वगैरह में कुछ ना करो तो सिंपल, पहले बेसल डोज में संचार डाल दो, बाद में भूमि का डाल दो, और उसके साथ में थोड़ा सा पहले डीएपी डाल दो आधी बैग, और बाद में थोड़ा आधा बैग यूरिया डाल दो, थोड़ा सा पोटाश डाल दो तो भी चल जाएगा। खाद का बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट है प्लांट डेंसिटी मेंटेन करना। आपको 7000 प्लांट मेंटेन करने पड़ेंगे तो ही फ्लावरिंग अच्छी है। दो वेरायटी अलग अलग करो, 2-3 टप्पे में करो, तो आपको ये मुनाफे वाली खेती हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे मैंने कहा है कि 4 टन तो मिनिमम उत्पादन आता ही आता है, 4000 किलो, और उसके बाद में आप अच्छी सी मेहनत कर लेते हो तो थोड़ा उत्पादन बढ़ने की भी संभावना है, और आपका नसीब लग गया और 4 टन में से 1000 टन 30-40 रुपए किलो चला गया तो 30-40 हजार तो उसी पीकिंग का आ जाएगा, बाकी का 20-30 हजार दूसरा आएगा, तो 50-60 हजार प्रति एकड़ 2-3 महीने में आ सकता है। अभी आते हैं ना दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया ये फसल उस पेस्ट को आकर्षित करती है, यानी कि हरी इमली की जो पतंग होती है उसको आकर्षित करती है अंडे रखने के लिए। तो ये आप कोई भी ऐसी फसल लगाई है, जैसे कि वेजिटेबल्स लगाया है या तो अरहर लगाई है, तो उसकी बॉर्डर पे कर दो, या तो एक एक लाइन छोड़ के एक एक में करो। तो अरहर वगैरह लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, 4-5 महीने का फसल है। बैगन वगैरह 4-5 महीने का फसल है, तो उसकी बॉर्डर पे आप लगाते हो, या तो 2-3 लाइन लगा के लगाते हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम 45-60 दिनों में हो जाएगी, प्लस उसके साथ ही साथ में वो इलियों को आकर्षित करता है, तो वहां इलिया ज्यादा आएगी, तो आप दवाई उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो, और आपको निगरानी में भी रख सकते हो कि भाई यहाँ भी इलिया ज्यादा है तो अभी आगे अपनी मुख्य फसल में भी इलिया आएगी, तो एक ट्रैप क्रॉप की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो इसको। दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जमीन के अंदर निमेटोड कंट्रोल करता है। लोगों के अलग अलग विचार है इसमें, कि ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें निमेटोड ज्यादा आ जाते हैं इसलिए मुख्य फसल में नहीं आते, कुछ लोगों को ऐसा सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो हमको सुगंध आती है वो अल्कलॉइड है, और वो कहीं ना कहीं निमेटोड के लिए जहर है, मतलब वो खाने से रोकता है, और खास करके हमने ऐसा देखा है, ये हमारा अनुभव है, गलगोटा जिसको बोलते हैं देसी वाला, उसमें थोड़ा वो प्रमाण ज्यादा होता है जड़ों में, और अगर आप वो पर्पज से कर रहे हो तो जैसे मैंने बताया कि निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, जैसे कई किसान भाई हमने देखा है कि राजस्थान में चूमू वाले इलाके में, ये गुजरात में अगर आते हैं तो ईडर के आसपास के इलाके में, मेहसाणा के आसपास में आते हैं, राजकोट के आसपास में, बड़ौदा के आसपास में, महाराष्ट्र में आते हैं तो ये नारायणगांव के आसपास में इलाके में, जमीन में मीडियम टू लाइट सॉइल है, जमीन उपजाऊ बहुत है, तो मीडियम टू लाइट सॉइल मतलब निमेटोड ज्यादा। इवन चिली वाला एरिया, कहीं भी चिली मिर्ची वगैरह होती है, लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिटेसिस फैमिली का होता है, वहां जमीन में निमेटोड बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप एक मानसून सीजन में इसकी खेती करो, और थिक डेंसिटी, जैसे मैंने बोला नॉर्मल कॉमर्शियल फार्मिंग करने के लिए आपको 6-7 हजार पौधे लगाना है, इसमें 10 हजार पौधे लगाने, और देसी वाला गलगोटा कर देना, आपका एक सीजन जाएगा, लेकिन लगभग लगभग निमेटोड से 80-90% शांति मिल जाएगी। ये ट्रीटमेंट ऐसी है कि मानो कि कुछ ना किया, आपने 8-10 हजार पौधे लगाए हैं, तो आपका 4 टन भी 5 टन भी प्रोडक्शन आ गया, और 10 रुपए भी रेट आ गया, तो आपको 50 रुपए मिलेंगे, और ऊपर से फ्री में निमेटोड कंट्रोल हो जाएंगे। वैसे कई किसान भाइयों को पता होगा कि निमेटोड की दवाइयां बहुत महंगी आती है, मल्टीपल टाइम ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता, जब ट्रीटमेंट किया है तो 10-15 दिन 1-2 महीना अच्छा लगता है, फिर दूसरी चीज में दूसरा प्रॉब्लम। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप कर सकते हो, कि आप इसकी खेती कर लो, थोड़ा थिक डेंसिटी प्लांटिंग करो, और उस

जब ये इसका जो मटेरियल जाता है जिसको रूट एक्जुडेट बोलते हैं, उससे निमेटोड को खाने में बहुत तकलीफ होती है। उसको एवोइडेंस बोलते हैं कि मतलब कांटेक्ट, जड़ से कांटेक्ट जो होना है वो होता नहीं, हुआ तो भी बहुत इन्फेक्शन होता नहीं। ओवरऑल कहने की बात यह है कि ये निमेटोड को मैनेज करने में बहुत अच्छी तरह से सक्षम वनस्पति है, इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो मैंने तीन पार्ट बताए, एक पार्ट ऐसा है कि इसकी खेती में मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट ऑफ सोइंग है कि कब सोइंग करोगे तो कब प्रोडक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से, अभी के हिसाब से ऐसा है कि अगस्त के पहला, दूसरा या तीसरे पखवाड़े में किया तो आपको फायदा होगा, लेकिन मार्केट की फ्लक्चुएशन से निजात पाने के लिए आपको दो वेरायटी पसंद करनी है और तीन या चार टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो आपको, जैसे हमको भी अनुभव है, मुझे 2 रुपये भी किलो बेचा था और 120 रुपये भी किलो बेचा था, तो ये आपका हो सकता है 40-50-60 हज़ार का एकड़ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि बगैर ऐसा करें कि आपका 4 से 5 टन प्रोडक्शन आए और 50 रुपये किलो बिके, 2-2.5 लाख का एकड़ भी हो सकता है इसमें। और उसके आगे निमेटोड बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल होते हैं इससे। और तीसरा कि जैसे इसको ट्रैप क्रॉप की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कि जैसे ही हरी इल्ली को ही आकर्षित करता है। और एक किसान भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि खास करके पोमोग्रेनेट यानी कि अनार की खेती करने वाले किसान हैं, जो कैसा लगाते हैं, दो दो दो तीन तीन प्लांट लगाते हैं दो साइड में, मतलब ये लाइन है ये लाइन है, तो यहाँ पे लगा देते, फिर उस तरफ नहीं लगाते, फिर आगे लगाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कमर्शियल की तरह लगाओ, एक पेड़ के आसपास में 15-20 पौधे लगा दो, गोलाई में हो सके तो ज्यादा लगाओ, बराबर आपका प्रोडक्शन भी आएगा, मार्केटेबल वॉल्यूम आएगा आपको, कि आप मार्केट में ले जा पाओ उतना वॉल्यूम में प्रोडक्शन होगा, तो आपको मॉनसून में खर्चा निकल जाएगा बहुत बड़ा। आप ये पपाया में लगा सकते हो, पपाया की बॉर्डर पे एक कैच क्रॉप की तहत आ जाएगा, क्योंकि पपाया का नॉर्मली लागवड़ जो होती है, नॉर्मल पपाया लगाते हैं मार्च अप्रैल या तो मई में लगाते हैं, तो पपाया छोटा सा रहता है तो उसके बाजू में आप लगा सकते हो, लगभग वही एक पपाया के आसपास में लगभग 4 से 5 पौधे 10 पौधे भी लगा सकते हो आप। ये कोई खाद खाता नहीं है, जितना पपाया में डालते हो उसमें 10-15% खाएगा, लेकिन जो निमेटोड के सामने रक्षण करेगा और जो इल्लियों को बचाएगा उतना ही काफी है, तो उतने से आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो खास करके बागवानी जो फसलें हैं उसमें ये एक कैच क्रॉप प्लस ट्रैप क्रॉप की तरह आप उपयोग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे गेंदे का जो खेती है बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि किसान को फायदा ही फायदा करवाता है, कि एक एंगल से नहीं, आप मल्टीपल एंगल से देखो आपको फायदा होता है। कभी ऐसा होगा, किसी किसान का होगा, हमारे साथ भी हुआ है ऐसा, कि 1-2 रुपये में किलो में बेचा और कोई फायदा नहीं हुआ, पूरा 3 टन 4 टन माल था और पूरा हमने 4-5 हज़ार रुपये लिया है, कि जितना तो उसमें डाला था उतना भी नहीं आया, लेकिन फिर वो जमीन सुधर जाती है, वो दूसरा बेनिफिट है, वो सब बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए खास करके इसको एज ए सिंगल क्रॉप लोग नहीं करते, मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, या तो जैसे मैंने बताया सिंगल क्रॉप करना है तो मल्टीपल टप्पे में, मतलब 1-2-3 टप्पे में प्लांटिंग करना है। तो किसान भाइयों खूब खूब धन्यवाद, हमको अच्छी तरह से सुना।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे इस प्यारी सी चर्चा को। हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा होगी और हमारे किसान साथी जो घर पर बैठे हैं वो इस तरीके की खेती कर अपने व्यवसाय के रूप में इसको ले सकते हैं। और व्यवसायिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे किसान साथियों को फायदा ही फायदा होगा। और अगर वैज्ञानिक विधि से हमारे किसान साथी इस फसलों को करना चाहते हैं तो जरूर अपने कृषि विस्तार अधिकारी या फिर संबंधित वैज्ञानिक से संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में आने वाली फसलों के लिए हम तैयारी भी कर सकते हैं, साथ में अपनी मिट्टी की परीक्षण भी करा सकते हैं और अपने मिट्टी में कौन से तत्व की कमी है उसकी भरपाई हम किस तरीके से कर सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि हम अब आने वाले समय में हम केमिकल से भरी खादों का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके हम जैविक विधि से अपनी खेती को करें, ताकि अपनी फसल जो उत्पादन होगा कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक कम होगा, लेकिन इसके बाद उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और हमारे साथियों को ये राहत भी मिल जाएगी कि हमें जैविक भरी जो फल या सब्जियां रहती हैं या फूल रहते हैं उनका सेवन हमें करने को मिलेगा। तो हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इवीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा देवी गीतन को और देवी गीतन को आनंद ले हैं। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में। तो आओ दोस्तों, देर न करे तुम्हें कार्यक्रम को तो आगे बढ़ाऊ थे और कार्यक्रम में सुनते हैं प्यार प्यारे से देवी गीतन को। सो आओ सुनते हैं सबसे पहले जो गीत जी गा रहे हैं दिनेश सोनी जी।

झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी खोल पलक झलक दई श्री जय मिट गई ललक हमारी पान बतासा ध्वजा नारियल पान बतासा ध्वजा नारियल से

दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन के लाने बरसन से, दर्शन लगी नजरिया भैया खोल दो, भैया खोल दो जे द्वार की कबरिया।